एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, आज रविवार है। तदनुसार 2 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी।

0: उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदाव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रिन मॉर्निंग ड्रेवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर जुए के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है सत्य शोधक।

सत्य वो है जो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनशील है और जिसमें सभी का कल्याण है। जो व्यक्ति कल्याण की भावना से प्रतिबद्ध है वही सत्य बोल सकता है, वही सत्य शोधक है। वर्तमान, भूत और भविष्य की प्रत्येक अवस्था में सत्य सनातन है, निश्चल, पवित्र और आनंददायक है। हम मनुष्यों को व्यावहारिक जगत में रहते हुए सत्य शोधक होना चाहिए। इसके लिए सत्य के असीम सौंदर्य और इसके महत्व को समझते हुए हमें अपने दैनिक लोक व्यवहार में विवेक के प्रकाश को आत्मसात करना होगा। हमारे अंतस का अनुभव सत्य है, ये चेतना से भरपूर है, ये शांति और आनंद देता है। बाह्य सुख सुविधाएं अंतस को आनंदित नहीं कर सकती, क्योंकि परम आनंद तो आत्मा के ज्ञान से मिलता है और आत्मा चेतना का प्रकाश हमारे अंतस या अंतःकरण को पावन करती है, क्योंकि इससे अज्ञान दूर होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा परम लक्ष्य है। मन, वाणी और कर्म से सत्य का साधक अपने अभिमान, अज्ञान की आहुति देकर अपनी आत्मा को सत्य के प्रकाश से उजागर कर देता है। सत्य का शोधक संसार के दुर्गुणों को ध्वस्त करते हुए कदम से कदम बढ़ाकर नई सामाजिक संरचना और नए युग का निर्माता बनता है। आइए आज सुबह की शुरुआत सत्य के शोधक बनकर समाज को नई दिशा देने के शुभ प्रयास से करते हैं।

आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी जयपुर के यामिन शरण से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम

0: जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले, आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:40 होने को है। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय।

अब से कुछ देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात। छह बजकर 50 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। सात बजकर 20 मिनट पर समय रहेगा कार्यक्रम वातायन का। आपके पसंदीदा कार्यक्रम खुश दिल से का समय रहेगा प्रातः 8 बजकर 15 मिनट पर।

राजस्थानी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे 8:45 पर। प्रातः 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। वहीं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रातः 9 बजे जयपुर केंद्र से। प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर।

सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10 बजे। सायंकालीन सभा में समाचारों का प्रसारण समय कुछ यूं रहेगा। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से, समाचार संध्या 8:45 पर दिल्ली केंद्र से, वहीं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय प्रातः के 8:45 होने को है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती निबात।
1: खेती निबात हमारे द्वारा सब किसान भाइयों ने निबोनो ने शंकर भाई नु राम राम। किसान भाई देखो हवा हवा में टेम है ने खेती बाड़ी में काम करी रहे हैं। किसान भाइयों अवड़े जो है आपने ने बदलवानी जरूरत है, कोई नवाचार करवानी जरूरत है। खेती में अपने ने वैज्ञानिक तरीका थे की खेती करवानी जरूरत है ने इनी पूरी जानकारी आपने ने राखी ने सही तरीका थे की अगर अपने खेती करेगा तो अपने ने इनकी कीमत भी अपने अच्छी मिलेगा ने इनथे की अपने ने आय अच्छी थाएगा। आपका मुख्य उद्देश्य है अपनी आय बढ़ाओ। किसान भाइयों आपने अगर जैविक खेती थकी करेगा खेती बाड़ी तो आपने घना फायदा है। जैविक खेती नो नवो रस्तो आपने अपना बोझे ने जैविक खेती थकी अपने खेतर में अपने पारंपरिक फसलें हैं गेहूं है चावल है मक्का है ये अपने करवी जुए ने हाथे अपने गन्ना भी आपने करी सको अमरूद भी आपने करी सको नींबू भी है अभी जो फल है ये भी आपने हाथे हाथे जैविक तरीका थकी करी सको। खेतर में नहीं अपने सोलर सिस्टम लगा सको ने फवारा ड्रिप सिंचाई थकी सिंचाई करी सको तो अंत की जल संरक्षण है इन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। किसान भाइयों आपने जो है कि आम है अमरूद है इनकी जैविक बागवानी भी करी सको ताकि अपने किसान भाइयों ने अच्छी कीमत मिले। जैविक खेती जो है इन्हें करवाने में शुरुआत में तमने लागी सके किसान भाइयों के उत्पादन आपने कम मिली हुए पर ये जो है इनकी गुणवत्ता है इन्हें बाजार में जो कीमत है ये आपने वगैरह मिलेगा जिनसे की आपकी आय जो है ये बेहतर थाएगा। मैं जही रहा किसान भाइयों अपने उद्देश्य साफ हो ते खेतर में नए जो है जीवन जो है ये आपने हरी भरी में सार्थक लागे क्योंकि स्वस्थ मिट्टी है इस स्वस्थ समाज में नींव है। किसान भाइयों खेतर में जो उपजाऊ शक्ति है इन्हें जो रहस्य है ये गौमूत्र है जैविक खाद है ने वर्मी कंपोस्ट है। किसान भाइयों अपने 8 से 10 गाय पाली ने प्राकृतिक संसाधन में उपयोग करीने मिट्टी जो है इन्हें अपने पुनर्जीवित ने उपजाऊ बनाई सको। किसान भाइयों वना का रासायनिक उर्वरक ने कीटनाशक ने तैयार करेली जो फसलें है ये न केवल स्वास्थ्य वर्धक है बल्कि इनकी गुणवत्ता जो है ये भी पारंपरिक खेती थी की खूब वधारे रहे। इसलिए किसान भाइयों जैविक खाद नो अपने प्रयोग करो जीए जैविक खाद जो है जिनकी वर्मी कंपोस्ट है अच्छी जो वर्मी कंपोस्ट आवे इनमें मिट्टी में हल्की हल्की खुशबू आवे ने अगर इनमें खाद में सड़ी थकी बदबू आ रही है तो इनमें मतलब है कि ये खाद जो है ये खराब है इनमें कोई न कोई रसायन की मिलावट थी सके। केचुआ जो खाद है इन रंग हल्को कारो भूरो रहे बनावट जो है ये चाय पत्ती जबकि दाड़ेदार हल्की रहे। अगर खाद में जिंदा केचुआ है तो खाद अच्छी है अगर केचुआ जो है मरी गए हैं तो इन्हें मतलब ये है कि यानी पीएच वैल्यू नी गड़बड़ी है कीटनाशक नी मिलावट नो संकेत थी सके। अच्छी गुणवत्ता नी जो वर्मी कंपोस्ट है इनमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश ने हाथे सूक्ष्म पोषक तत्व एंजाइम भी रहे जो फसलों में वृद्धि में सहायक रहे। असली जो वर्मी कंपोस्ट आवे ये हल्की रहे। किसान भाइयों आवी रीते अगर आपने जैविक खेती अपनाऊंगा ने जैविक खाद न प्रयोग करूंगा गौमूत्र है वर्मी कंपोस्ट है अन्न प्रयोग करी ने अपने फसलें उगाऊंगा तो किसान भाइयों ने जिंदगी आय भी अच्छी थाएगा ने किसान भाइयों ने जीवन स्तर जो है ये भी अच्छो ऊपर उठेगा ने परिवार जो है इन्हें शिक्षा ने अन्य जो खर्च है इन्हें वास्ते आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों शंकर भाई ने आलो इजाजत ए आवजू राम राम राम राम।
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम।

0: खेती निबात एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत जय सीदायमा व साथियों की आवाज में।
1: वाचोगे।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत जो अभी ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे व्यंग वार्ता, जिसका शीर्षक है सड़क छाप सड़क एवं हार का ठीकरा, भरतचंद्र शर्मा की आवाज में।
1: सड़क छाप सड़क महाकवि निराला की काव्य नायिका एक सदी से इलाहाबाद की किसी सड़क पर पत्थर तोड़ रही है, पर सड़क छाप सड़क अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस सड़क के नाम पर न जाने कितना बजट उद्रस्त हो चुका, पर ये डेढ़ पसली की सड़क ढीठ की तरह विकास की राह का रोड़ा बने खड़ी है। महाकवि की कविता पढ़ते पढ़ते हम अपने शहर की सड़कों में कहीं खो जाते हैं। शायर कृष्ण बिहारी नूर ने ठीक ही कहा है, हम तो गजल सुनाकर खड़े रहे, सब अपने अपने चाहने वालों की भीड़ में खो गए। तो हर शख्स को अपना शहर याद आया, सड़कें तो खुद बखुद जख्मों की यादों में चली आई, पांव के छालों को भूलकर जो सड़क के साथ सहानुभूति रखते थे उनके लिए शोध का विषय था कि आखिर सड़क छाप ही क्यों रही सड़क। इन परोपकारी सड़कों पर ठोकरें और दुर्घटनाएं नहीं होती तो हड्डी रोग विशेषज्ञ किस पर प्लास्टर चढ़ाते, फिजियोथेरेपिस्ट दिन रात किसकी टांग खींचकर अपना पेट पालते। तो सड़क छाप सड़क के अनेक आभूषण हैं, अध कचरे डिवाइडर, खस्ताहाल स्पीड ब्रेकर, वीर गति को प्राप्त हमारी सड़क के बदन पर अनेकानेक गड्ढे, जैसे महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे हों। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का हक है, सड़क छाप सड़क भी संसद तक पहुंचना चाहती है, पर कविवर धूमिल ने उसे बताया कि संसद से सड़क तक, अर्थात एक दिन संसद खुद उनके पास सड़क तक आ जाएगी, तब से हमारी सड़क शबरी की तरह संसद की प्रतीक्षा कर रही है। निराला की नायिका निरंतर पत्थर तोड़ रही है, धूमिल के शब्द तारकोल के गर्म ढोल से आग के साथ धुआं उगल रहे हैं एक अदद सही सड़क के लिए। बरसात में भरी सड़क

पर हमारी अनुभवी और अभ्यस्त आंखें अनुमान लगाती हैं कि सड़क के शरीर पर किस टुकड़े में पांव रखने लायक डामर बचा हुआ है, और हम निर्मल वर्मा की तरह उस एक चिथड़ा सुख के सहारे गली की वैतरणी पार कर जाते हैं। कब्र खोदने वाला तो मृतक को जन्नत नशी कर रवाना होता है, पर सड़क खोदने वाले तो उसकी बोटी बोटी क्षत विक्षत करते रहते हैं। कभी नल वाले सड़क तोड़ रहे हैं, कभी गैस लाइन वाले, कभी गटर पाइप वाले, तो कभी केवल केबल लाइन वाले। एक बार सड़क बनते ही दूसरा विभाग सड़क तोड़ने के लिए टूट पड़ता है। 12 मास 32 घड़ी खुद ही सड़क देखकर लगता है जैसे सड़क न हुई, गरीब की जोरू हो गई, जो यतीम औरत की तरह एक के बाद एक लगातार अनेक प्रसव कर रही है। सड़क की निरंतर प्रसव पीड़ा टेंडरों वेंडरों के लिए महज एक खेल है। वो निरंतर सड़कें तोड़कर विध्वंसों पर निर्माणों के गीत लिखना चाहते हैं। तो देश की प्रगति के लिए सड़क को सड़क छाप सोच से बाहर लाना होगा। सड़क को बड़े सपने देखने होंगे, पगडंडी की सोच के बजाय राजमार्ग पर नृत्य करने का अभ्यास करना होगा। सड़क को भी फोकटिया राहगीरों को आंख दिखानी होगी। टोल वसूली का स्तर कायम कर एरे गेरे नथू खेरों से लंबी सड़क की तरह डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। कुल मिलाकर सड़क को कड़क होने का हुनर सीखना होगा। व्यंग्य हार का ठीकरा। हे राजन, जीत का सहरा बंधवाने को तो सभी आगे हो रहे थे, पर अब हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई सिर सामने नहीं आ रहा है। ठीकरे से उठ रही आंच से मेरा हाथ जल रहा है, बताइए इसे कहां फोड़ा जाए। यह कहकर बेताल राजा विक्रम की पीठ से उछलकर पेड़ की टहनी से लटक गया। राजा विक्रम की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए यह मामला अपने थिंक टैंक यानी कि किचन कैबिनेट को सरका दिया, पर वो थिंक टैंक के राग दरबारियों की बौद्धिक क्षमताओं को लेकर विचार में पड़ गए, क्योंकि विचारकों की सर्वे रिपोर्टों में कहीं भी राजा के पराभव का कोई संकेत नहीं था। राग दरबारियों ने उन्हें एक पांव पर न जाने कितने कितने निरर्थक डांस करवाए। राजा को इस बात का पछतावा था कि वो समय रहते राग दरबारियों के शरीर के चौथे माले का सही आकलन क्यों नहीं कर पाए। जो दिन रात थिंक करते करते न जाने कब का खाली हो चुका था। इन दरबारियों ने राजा को प्रक्षेपित करने के लिए कोई चैनल तो क्या किसी अखबार का कोई कालम तक खाली नहीं छोड़ा। छवि चमकाने के चक्कर में उन्होंने अखबारों में उठावने और तिये की बैठकों वाले कॉलमों में भी विज्ञापन दे दिए। राजा के चिंतन शिविर गरीबों की झोपड़ियों की टूटी चारपाइयों पर लगवाए गए। मतदान के बाद सेलिब्रिटीज के मुस्कुराते चेहरों के मध्य अंगुलियों पर मतदान की स्याही चमक रही थी। गरीब निरक्षर मतदाता तो बड़ा घाघ हुआ करता है, उसकी अंगुली जो किसी अखबार में नहीं थी उसने न जाने कौन सी अंगुली पर देवराज इंद्र के अभिमान का पर्वत उठाकर बाहर की तरफ देखा। तो थिंक टैंक के फूटे कारतूसों ने 9 दिन में चले 2.5 कोस की गति से

0: रणनीति बनाने में व्यस्त रही। बेताल ने ठीकरा फोड़ने के सवाल को लेकर राजा को बेहाल कर दिया था, तो राजा विक्रमादित्य ने प्रत्युत्पन्न मति से युक्ति सुझाई कि बेताल, इस ठीकरों को फोड़ने का विचार छोड़कर इसे चुपचाप नए राजाओं के मुकुट में कहीं छिपा दो। एक दिन ठीकरा नए राजाओं के मुकुट से स्वयं टाइम बम की तरफ फटेगा। राजा परीक्षित के मुकुट की कली कथा को याद करो।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वातायन, जो अभी संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में, हम राज इस फिल्म से। साहिल लुधियानवी की रचना, तर्ज बनाई है रवि ने।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। अगला गीत रवि के संगीत से सजा साहिल लुधियानवी की रचना है, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ है, फिल्म का नाम वक्त।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: खयाम के संगीत से सजा मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, सुनिए फिल्म का नाम है मोहम्मद, मोहब्बत इसको कहते हैं।
5: कह दिए हो शुम

0: प्यास आंखों की बुझा लो तो चले।
1: कार्यक्रम हम है राही प्यार के में अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। मेरी सनम इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और पी नैयर का संगीत।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रहेगा।

0: क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हाय हाय
2: जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में, शैलेंद्र के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सहेली से लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है।

सहेली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की अब यहीं संपन्न होता है।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव

0: लाभ किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

0: کیا ہے۔ خراب موسم اور سمندر میں تیز لہروں کو دیکھتے ہوئے مچھلی پکڑنے پر روک لگا دی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں موسم وبھاگ نے کچھ استھانوں پر تیز بارش، بادل پھٹنے اور اچانک باڑھ کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے سترک رہنے کی صلاح دی ہے۔ آج پردیش کے کچھ حصوں میں بوچھاریں پڑ سکتی ہیں۔ ازبکستان کے ودیش منتری سیدوب بختیار اودلوویچ آج سے 5 اگست تک بھارت کے آدھیکارک دورے پر رہیں گے۔ ودیش منترالے کے انوسار وہ راشٹرپتی بھون میں راشٹرپتی دروپدی مرمو اور ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سینیا کارروائی تیز کرنے کی چیتاونی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ایران سمندری جہازوں پر حملے بند نہیں کرتا اور بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتا تب تک امریکی حملے جاری رہیں گے۔ اس بیچ امریکی ودیش وبھاگ نے پشچم ایشیا میں رہ رہے اپنے ناگرکوں کو چھیتر چھوڑنے یا استھتی بگڑنے پر وہاں سے نکلنے کے لیے تیار رہنے کی صلاح دی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے انوسار ایک ورشٹھ سرکشا ادھیکاری نے کہا ہے کہ ایران نے سمبھاوت سینیا کارروائی کی استھتی میں اسرائیل کے مہتوپورن ٹھکانوں اور کھیتر میں موجود امریکی ارجا پریسمپتیوں پر حملہ کرنے کی یوجنا تیار کر لی ہے۔ اور اب راشٹرمنڈل کھیلوں سے جڑی جانکاری کے ساتھ ہیں مکیش کمار بل۔
1: گلاسگو میں جاری راشٹرمنڈل کھیلوں کے 10ویں دن 4 الگ الگ سپردھاؤں میں 16 پدک جیت کر بھارت پدک تالیکا میں 4تھے استھان پر پہنچ گیا ہے۔ بھارت نے 13 سوئرن، 17 رجت اور 9 کانسے سہت کل 39 پدک اپنے نام کیے ہیں۔ بھارت کے خاتے میں سب سے ادھک 10 پدک مکے بازی سے آئے ہیں۔ بھارتی ایتھلیٹوں نے پروشوں کے پیرا شارٹ پٹ اور پروشوں کے ٹرپل جمپ میں 2-2 میڈل جیتے، جبکہ جوڈو اور ایتھلیٹکس میں 1-1 میڈل اپنے نام کیا۔ بھارتی مکے بازوں نے راشٹرمنڈل کھیلوں میں ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉर्ट पुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है कांग्रेस जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल। लिखता है अमर उजाला, उन्होंने कहा किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं। डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ 1 माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार

0: रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: खिड़कियों से छनकर आती सुबह की ये पहली किरण माही नदी की लहरों पर बिखर दी मखमली धूप और आपके हाथों में गर्मा गर्म चाय की प्याली। नमस्कार, आदाब, खम्मागढ़ी और एक बेहद खूबसूरत गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हमनवा अस्मा खान और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आज की इस ताजा सुबह का आगाज दिल के सबसे पाकीजा और अनमोल रिश्ते के नाम, एक ऐसा रिश्ता जो उम्र, सरहद और फासले का मोहताज नहीं होता। जी हां, आज हमारी इस महफिल का मौजू है दोस्ती। तस्किरा जब हो वफा का तो याद आती है दोस्ती, जिंदगी के हर अंधेरे में जो दिया जलाती है दोस्ती। चलिए यादों के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमा जो सीधे आपके दिल की तार छुएगा। तो बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल के साथ।

दोस्तों, जिंदगी की इस आपाधापी और मसरूफियात के बीच जब कभी थक कर बैठ जाते हैं तो सिर्फ वो दोस्त ही होते हैं जो बिना कुछ पूछे हमारे दिल का हाल जान लेते हैं। सच्ची दोस्ती में कोई तकल्लुफ नहीं होता, कोई हिजाब नहीं होता। वहां आप जैसे हैं वैसे ही कबूल किए जाते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा राजदार है जिसके सामने आपको अपनी कमियां छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती? याद कीजिए उन्हें, क्योंकि अगला गाना उन्हीं यारों के नाम है।

दोस्तों, कभी फुर्सत मिले तो अपने घर की किसी पुरानी अलमारी को टटोलना, शायद वहां धूल जमी हुई एक पुरानी डायरी मिल सकती है, या स्कूल के दिनों का वो ऑटोग्राफ जिसमें दोस्तों ने लिखा था कीप स्माइलिंग या डोंट फॉरगेट मी। आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास महंगे मोबाइल है, ब्रांडेड कपड़े हैं और बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन सच बताना, क्या वो बचपन की आधी कटी हुई पेंसिल और स्कूल की छुट्टी का वो आखिरी घंटी, क्या वो अमीरियत आज करोड़ों खर्च करके भी खरीदी जा सकती है?

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, दुनिया का हर रिश्ता हमसे कुछ न कुछ मांगता है, हमारी कामयाबी, हमारा स्टेटस, हमारा बर्ताव। लेकिन एक दोस्त ही है जो हमारा क्रिटिक भी है और हमारा फैन भी। दोस्त वो है जिसके सामने आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जहां आप अपना बिखरा हुआ चेहरा लेकर भी जा सकते हैं, जहां आप रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं और अपनी नाकामियों का पिटारा खोलकर बैठ भी सकते हैं। वो आपको जज नहीं करेगा, वो बस आपकी पीठ थपथपाएगा और कहेगा, चल छोड़ ना यार, चाय पीते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई ऐसा है जो आपकी चुप्पी को समझता है, तो यकीनन आप पर खुदा की बहुत बड़ी इनायत है।

दोस्तों, दोस्ती संभाल कर रखी जाती है, जिंदगी का सबसे हसीन सरमाया है। आज के इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप उस जिगरी यार को एक कॉल जरूर मिलाइएगा, चाहे सालों से बात ना हुई हो। आज बस कह दीजिएगा, दोस्त तू मेरे लिए बेहद कीमती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत, जो यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजसमंद दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जयपुर में चल रही कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कोटा की अरुंधति ने महिला 70 किलोग्राम भार वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माई भारत पोर्टल के जरिए इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान शुरू होगा। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठन, युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संघ और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों से जुड़ेंगे। अभियान के दौरान पदयात्रा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक और खेल आयोजन तथा अन्य गतिविधियां होंगी। ये अभियान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर दोपहर 12:30 पर पहुंचेंगे। यहां से वो सड़क मार्ग से सीधे विश्व मिलियन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वो जिले के लिए 436 करोड़ रुपए से अधिक के 344 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा समारोह में लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी वितरित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कर्तव्य पथ संवाद, नेतृत्व और निष्ठा का मिलन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल उदयपुर जिले की बीड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में लोगों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं के सुझावों और विचारों को सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान उन्होंने परीक्षा के सुचारू संचालन, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। बैठक में श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और एनबीईएमएस तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए कुल 273,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराए हैं। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पारी में आयोजित की जाएगी। इधर जयपुर में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने नीट यूजी काउंसलिंग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सभी मेडिकल संस्थान, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा राज्य काउंसलिंग प्लेटफॉर्म द्वारा लागू किए गए नए नियमों का गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 के दूसरे दिन

0: न्यायपालिका और विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मध्यस्थता न्याय तक त्वरित, सुलभ और कम खर्चीली पहुंच का प्रभावी माध्यम है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने इसे विवाद समाधान का पहला विकल्प बनाने पर बल दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने प्रदेश में मध्यस्थता प्रशिक्षण और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की जानकारी दी। सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में पारिवारिक, आपराधिक, व्यावसायिक और कार्यस्थल संबंधी विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों और निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि मध्यस्थता समाज में विश्वास कायम करने और न्याय को अधिक जनोन्मुखी बनाने का प्रभावी माध्यम है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज और सुधार और समाज के संगठन के लिए विशेष काम किया। उन्होंने बताया कि उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए। श्री बागड़े कल अजमेर के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सभ्यता, नैतिकता और मानवता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनमें ईमानदारी के गुण विकसित हो सके। समारोह में विभिन्न लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी अवलोकन किया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। इधर प्रदेश से कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने महिलाओं की 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की चेंटिल रीड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की पहली बॉक्सर हैं। उनकी जीत पर कोटा में जश्न का माहौल है।
1: शहर की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत पर शिक्षा नगरी कोटा में जश्न का माहौल है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतकर अरुंधति ने पूरे देश के साथ साथ अपने शहर कोटा का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गलियों से लेकर चौराहों तक इस समय बस एक ही नाम गूंज रहा है, ढोल नगाड़ों की थाप के बीच कोटावासी अपने स्वर्णिम पंच वाली गोल्डन गर्ल की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: इसके अलावा मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घांगस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पांघल ने स्वर्ण, जबकि जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर अरुंधति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज देशभर में फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस मनाया जा रहा है। अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाने वाला ये दिन दोस्ती को समर्पित है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, उपहार और कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आज वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजसमंद दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जयपुर में चल रही कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कोटा की अरुंधति ने महिला 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: it should not convert into a big dispute. So this is the first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, trade unions या कोई भी miscreant व्यक्ति उसको misguide कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क कमेटी भी बनाई जाएगी. और उस वर्क कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को वो एड्रेस करे. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी की जो की पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियां इन हाउस कमेटी है, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है. और वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस एड्रेसल कमेटी भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी. सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क्स कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस एड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेलियर हो जाए सेटलमेंट. अब काउंसिलर्स ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है. और वो सीधे जा सकता है, कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित है, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाए.
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो कर्मचारी जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-member tribunal। पहले केवल 1-member tribunal था, अब हमने बना दिया है 2-member tribunal और इसके अंदर एक जुडिशियल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन

में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसिलिएशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है, वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर टू मेंबर ट्राइब्यूनल है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा और जुडिशियल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इंपोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाते जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है, कि जहां नहीं थर्ड पार्टी को ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूंगा कोडन वेजेस की, क्योंकि कोडन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा आईआर कोर्ट में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से या मैटरनिटी बेनिफिट या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज को सुनेंगे। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पे वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है या बोनस के डिस्प्यूट है, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से, तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीजें बताई, एसआई और पीएफ और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है, इसको कवर किया गया है इसमें, तो आपका 80% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में, कि इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा। इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, ईपीएफओ और ईएसआईसी को इसमें कंटिन्यू रखा गया है, और जो ये सारे चीजें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करेंगे। तो इसमें भी दो अथॉरिटीज बनाई गई है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज, जो ग्रेच्युटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है, और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये ओएसएच कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है, कि जो आपका जो वर्क प्लेस है बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है, सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं जहां पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी, क्योंकि माइंस में अलग तरह का हैजार्ड्स है
और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार से, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटी।

0: इसका प्रावधान किया गया है, जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए, और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है। मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: You were listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: तो ये लगता क्या रही है? हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
3: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती की दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

राजस्थानी मांड की ये विकलता, ये बेकरारी। फिल्म रेशमा और शेरा।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपके संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सेटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे,
3: हाँ।
2: और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना

0: पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है। इसमें क्या तकलीफें आती थी?
1: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है। पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, अब प्रोग्रामिंग हो जाती है तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है। समझ गए?
0: जी।
1: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था
0: जी।
1: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई हाय मैं, ये जैसे गया।
0: हाँ।
1: अब आंखों की बनी जन्म को बहुत भाव गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में मैं देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना, डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा, चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक में आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे आपने बजाया बजाया तो जैसे जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट, कट दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या आके जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
0: जी,
1: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूँ। आज क्या क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस ज्वाइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है। तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
0: नहीं आती है। जी जी जी
1: जी।
0: तो कोई गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था उन दिनों, 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था, या एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
1: एक दिन।
0: अच्छा,
1: एक दिन? मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विथ सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विथ कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में, और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार, वो भी लाइव 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए। और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना दो दिन में भी किए।
0: हाँ जी।
1: तो वो ऐसा नहीं है, वो दो दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
0: जी,
1: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी। तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए, मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोगों उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
0: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
1: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए, जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की कृपा होती है। उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो, से जी जान तोड़ के वो गाने को गाया, ओले ओले गाने।

0: के बाद अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी मतलब मिसेस चोपड़ा
1: प्रेमिला जी
0: तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज्यादा बेटर
1: मिलता है,
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे इतने में यश जी आ गए, यश जी आते हम दोनों चुप हो गए, तो हम दोनों को देखते यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला बोलो तानसेन क्या बात है, मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो, मैं बोला अभिजीत ज्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये हमारा काम है, म्यूजिक का हमारा नहीं है, म्यूजिक का काम है म्यूजिक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है। तो ही इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है, अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तानसेन जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात, और बहुत शानदार गाना गाया उसने।
0: नहीं नहीं बहुत
1: अच्छा, आवाज में जो सैफ अली साहब की आवाज
0: सूट हुई, और
1: बिल्कुल सूट हुई
0: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, मगर जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था
1: जी,
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है।
0: हाँ।
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ मगर पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आरडी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात किशोरदा उस वक्त जिंदा थे
0: और आरडी बर्मन साहब से,
1: आरडी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार तो अमित कुमार के आगे हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के बोले सेन साहब के लड़के बहुत बताओ, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आया। इतने में अमित नीचे आया तो उनको बोला देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं।
1: और उसके बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में छिपाई
0: जी,
1: तो जिसका वो गाना था हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा ढोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना दिल से दूर
0: जी,
1: और नीरज साहब के साथ में पिक्चर की जाना दिल से दूर, विजय आनंद जी की जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई, विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था जहां

0: क्या बात है,
1: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए, आए हम तो सबको गले लगाए, हमें

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहां जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के साथ की मैंने सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत,
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के साथ आपने काम किया है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी,
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
1: बहुत सुंदर गाना,
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ पहला गाना था। अच्छा। इससे पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी रिया तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये था। हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का, आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा?
0: नहीं, वो गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है, तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी ये काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो, नहीं आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया, और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी जी जी, तो एक गाना सुन लेते हैं, कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना इसी पिक्चर में, धीरे

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी,
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें 19-20 चल जाता है।
0: जी जी,
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहां दिल में नहीं लगोगे।
0: सही।
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है।
0: जी, जी।
1: तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूं कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूं कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूं, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक

0: चाहते हैं।
1: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है।
0: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नरूला, ऋचा शर्मा, अपना
1: अनुराधा जी, अलका याग्निक,
0: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट, जोली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, प्रमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
1: पूर्णिमा के नाम से हैं
0: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेट्टी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं
1: जी,
0: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
1: नहीं नहीं वो बात नहीं, वो रिस्पेक्ट,
0: उनको पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट, यार वहां जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना,
1: और कला के प्रति समर्पण,
0: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।
1: कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
1: तुझे चाहना मेरा काम है, फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है दिलीप सेन साहब, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है और
1: नहीं, हम केसर सेन की औलादे हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में, लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है
0: जी।
1: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सुं आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके ज्वाइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं, मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब राजस्थान हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
0: कई गीतों में आपने प्रयोग किया?
1: नहीं, मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी,
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, मैं की याते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे अडोप्ट किया उस गाने को, हम मेरी टोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
0: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वो
1: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूनिंग के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं यार साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहां हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर

0: का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वेराइटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, या नहीं ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जी तब लगेगा जब जी वाला काम दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते।
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में मिला, इसके बारे में हम जानना चाहते
1: हैं। देखिए, दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी,
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक।
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का संगीत में रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है।
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आई गए हैं, सोहेल सेन के
1: बेटे भी आने वाले हैं अभी जल्द जी।
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और आपके परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए, इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए, कविताओं की मालूमात रखनी चाहिए, भाषाएं हमें जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़े, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज़ तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 रागे या 50 रागे या बेसिक दो चार पांच, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो चार पांच रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कोर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए,
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है
0: जी।
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है, प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते क्या आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश।
1: मैं आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूँ कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी,
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है। जैसे कि जटा जटा जटा जब प्रभावता वितस्थले वीरो विलम विलम भूतम भूतंग तुंग मार जटाट विगल ज्वल प्रभाव वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी,
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेटे दिल अंगूर की झपेटे दिल दुष्ट को दपेटे जरा पेटे चाकर लाने बजे न कचा रहते दिन तो होता कटाकट की रिसे ने पटा पटे पटी पटी बात कभी गुहे की लकार की लजू है जी लकार पड़ी भीड़ भी लकार कटे रखे जमीन दान कहे तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारू रघुवंश को अन्य और जन पे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंडे दंड न उमन न सुख न कल को इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, वो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है, कहीं का नहीं है, हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे

0: देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, चलो मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
1: अच्छा,
0: तो इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, नमस्कार।
1: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
0: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान की कुछ चुनिंदा गजलें।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय 11:30 हुए हैं। चलिए ले चलते हैं आपको फिल्मी गीतों के सफर पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ।

कीर्ति श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में ये गीत आपके लिए लाए हैं फिल्म दावते इश्क से। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत है साजिद वाजिद का।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरू कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

मित्र की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है। बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानंद किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत। आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी है। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं, उनके कयास आपको लगाने होते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर, ताकि आप और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उसका अंदाजा लगा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं, वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं।

लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारी एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आजादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आजादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे। आज के गीतों में ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आजादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था वो था कलम। और आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इससे शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं। तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया। जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे। क्लास सिक्स से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला। स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

ढीला कुर्ता है पजामा तंग तंग है, ढीला ढीला कुर्ता है पजामा तंग तंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ न रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों न हो, अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो।

ओ, तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था। और मुझे लगता है कि एक समय होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताब लेने पे, फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं, जब आपको सोना है रात के समय में फोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं, या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के

0: इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत। मन्नाडे की आवाज गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

वाला हम सफर हमराज हूं ता कयामत

छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है।

ممنون ہوں، تیرا ممنون ہوں، تو میرا

0: 回家的黑的妈妈累了，家的累的心的累。
1: जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफर के इबारत में कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज पर लिख दें और उस कागज को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तब शब्द भूल जाता हूं, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूं, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूं, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

0: योग लगा दे।
1: जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत है, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था सर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा दसवीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, व्हाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध है, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए व्हाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या व्हाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ

0: त्रिवेणी को लेकर आज मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। साथियों, दोस्ती जीवन का वो अनमोल रिश्ता है जिसे किसी परिचय, औपचारिकता या स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा बंधन है जो विश्वास, अपनापन, स्नेह और निस्वार्थ भावना पर टिका होता है। सच्चा मित्र हमारी खुशियों में दिल खोल कर मुस्कुराता है और कठिन समय में बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ खड़ा रहता है। कई बार जो बातें हम अपने परिवार से भी नहीं कह पाते हैं, उन्हें अपने मित्र से सहजता से साझा कर लेते हैं। मित्रता दिवस हमें ऐसे ही साथ निभाने वाले दोस्तों के प्रति सम्मान, आभार और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है। ये दिन याद दिलाता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादों, सबसे प्यारी मुस्कानों और सबसे मजबूत हौसलों के पीछे अक्सर किसी सच्चे दोस्त का साथ छिपा होता है।
1: हा हा हा

समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग अलग अलग शहरों और देशों में बस जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। आज तकनीक ने दूरियों को भले ही छोटा कर दिया हो, फिर भी रिश्तों की असली मजबूती केवल संदेशों से नहीं बल्कि अपनापन, भरोसा और एक दूसरे के लिए समय निकालने से बनी रहती है। एक सच्चा मित्र हमारी कमियों को स्वीकार करता है, हमारी खूबियों को निखारता है और हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाता है। यही वजह है कि दोस्ती को जीवन की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची पूंजी कहा जाता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को केवल आसान ही नहीं बल्कि खुशियों से भी भर देते हैं।

मित्रता दिवस केवल शुभकामनाएं देने या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को दिल से याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। आइए इस विशेष अवसर पर अपने उन मित्रों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ निभाया, हमारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश हुए और कठिन समय में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक छोटी सी शुभकामना, एक फोन कॉल या एक आत्मीय संदेश भी दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना सकता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय, दूरी और परिस्थितियों से कहीं ऊपर होती है। ऐसे सभी मित्रों को समर्पित है मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ 4थे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
4: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
4: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
3: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
4: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल

0: फाइनेंशियल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की

0: बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपेई ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपेई ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली

0: वेंकैया, महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्र ध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं श्री 420 इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र की शब्द रचना है और शंकर जयकिशन की धुन।

उड़न खटोला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं वचन फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की और गीत संगीत रवि का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है, लोग करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पंजू रूस और चीन में जाके काम की बात बता दी, अरे कामंडी गाना गाके आया हूँ मैं पंजू रूस और चीन में जाके काम की बात बता दी, मैंने कामंडी गाना गा।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने सिलखा था ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जशन फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का। आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

0: गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाजों में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।
1: तत् मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर नीरत करत उठ, नीरत करत उठ, हिरत बिरत उठ, हिरत बिरत ऐसी चंद्र तपन, दिग्दिगना दिग्दिगना दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो राम तत तई तत तई, राम तत तई तत तई, राम तत तई तत।

लहरियो लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नगिन तेज थे सगन नदादा किच झट झट झट झट झट झट सगन का किच

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूं यहां पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
1: और ये चिट्ठियाँ आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार, शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्श लायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफर था मन चाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
1: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
0: एलची रवाना कर दिया है आलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
1: माँ बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
0: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: बिना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
1: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
0: खाम अल करे आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए और एक ये बदनसीब जफर शायद के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
1: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी, मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले देखते रहते हैं।
1: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसे अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा है सामने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे फाहों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्श खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है आलीजा।
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्श खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार, फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मुहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
2: शाही मुहर की वक्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
2: बजा फरमा रहे हैं आलीजा, इस मादरे वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका

0: रखा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाई, शालीमार और निशात बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
1: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी, हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
0: आलिया, यहाँ से कूच की तैयारी हो चुकी है, आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूँ।

0: कौन लौट आए बख्त खान?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहा की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाह, कहां के आली जा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीखी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम भेष बदल कर निकल रहे हैं। अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की माथहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाए।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलिया, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खान, आलिया ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खान, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खान, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं, हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खान और ये ज़ईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चलें।
3: बख्त खान, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
0: बख्त खान, हमें मलिकाए आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
3: बख्त खान, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
2: आप खामोश हैं आलिया। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर मैं।

0: मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूँ।
1: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
2: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
1: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
2: वो आ गए।
1: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
2: फिरंगी, मैं देखता हूँ। मलिहाय आलिया,
3: मेरे सरताज,
1: हम आखिरी दाव हार गए। फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
3: बख खान को बुलवाएं।
4: कैन गुजरावट हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
1: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था।
4: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
1: मत कर इलाही बख्श।
4: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम, और तुमको मिलेगा सजा।
1: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
4: What did he say?
1: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
4: इज्जत, मर्डर का इज्जत। तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
1: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
4: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। डू यू नो बादशाह, तुम जानता है मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
1: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
4: आई नो हम एटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
3: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है, क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में?
1: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तश्त से खनपोश तो हटाए। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर कि हमारे लत जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों,

0: तोहफा। अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: परांज पे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन, थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर है। मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं कड़ी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई।
1: हाँ,
2: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई। और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू जवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बम्बई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया। और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
2: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी, और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नहीं नहीं आई हुई, पर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद, स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना। हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगे ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं, और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई had my own self-respect,

0: नेचुरली नहीं कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई। और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये 4 फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सई ने तो मुझसे बात की थी। मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष अवसठ करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता। तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे, तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, एंड दैट वाज इट, दैट वाज द लास्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड। फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा, मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी जाती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे।
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ।
0: हाँ हाँ, अरे वाह,
1: है ना, सुनते हैं।

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं, और एक दिलचस्प बात ये है कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं धुआं से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो पूरी दास्तान जो है अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहाँ चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक तिलस्म है।
1: क्या बात है। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला,
0: जी जी गौरव अवार्ड
1: जी,
0: उसकी बधाई भी देनी बाकी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी तक बधाई देता हूँ।
1: वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
0: वाह वाह वाह।
1: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए, तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बद्दूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की अच्छी अच्छी, ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हैं हाँ चश्मे बद्दूर, हाँ हाँ कथा, लेकिन ले दे के सही की ये दो फिल्में जो चिपक गई है, और कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन नहीं, लोग नहीं भूलने देते है, कहते हैं। और सच कहूं तो मैं भी नहीं भूल पाती हूं, ये भी कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड मिले ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा से किस्सा सुनाती हूँ कि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें बीआर चोपड़ा थे जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा सही, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया, क्या प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
0: क्या बात है।
1: गुल आनंद भी वहाँ थे, और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह, कहके उन्होंने कहा कि सही, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में

0: ठहरे थे तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरखी पार्क। हाँ तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी, टेलीफिल्म, कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं फला करूंगा, मैं ढुमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च डाला
1: जी।
0: अच्छा
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट एक महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए, भारत आके मैंने इधर उधर बताया। फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो फला करो, मैं अब मेहनत करूं लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले है आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी आवाज? मैंने कहा नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। लेकिन ऐसे करो प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने कहा। फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए उसमें भी, गुल का काफी ये था
1: योगदान,
0: एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए वगैरह वगैरह। मैंने क्या समझ रही हूँ, इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था,
1: अच्छे प्रोड्यूसर की निशानी,
0: अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और वहाँ भी गुल बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने, अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया, और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ सेम विथ फारूक, सेम विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेना, कुछ 2-3 लोगों के लिए मैं अड़ गई थे, एक वो

0: ही बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी।
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वो हंस के कहता है हाँ ओके बाबा ले लिया उसको, क्योंकि बाकियों को तो कह रवि को बिचारी को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना।
1: राकेश बेदी
0: वो नहीं मुझे मालूम क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को।
1: लेकिन कहाँ से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की। और फिर देखा था उधर उधर, फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे हुए, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर वेन ही वॉज कन्विंस्ड की यस इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान।
1: दो फिल्में और बहुत, वो अच्छा आगे बात करेंगे कि कैसे हाँ, कथा में हाँ, नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए है ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं।

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ, सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, मतलब ट्रिमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। उसने कहा फिर मुझे सईद ने, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे। हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे हर ठेले में जाके।

0: उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को, तो फिर हमने फुफन और याकूब लच्छन और ये वो हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस और वंडरफुल पर्सन।
1: सईद जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
0: ना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
1: अच्छा।
0: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी दुकानें छोटी छोटी। और फिर बरसातियां, बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है ना? तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विद ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह से वो किचन
0: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया। दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने। और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे बदूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं।
0: हाँ।
1: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
0: मजाक उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
1: जी। वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है, तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
0: कभी जीरत अमान का आता है
1: जी, जी,
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
0: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी
1: जी,
0: और कभी दिल चाहे या माथा यार
1: मैंने तो हाँ कह दी,
0: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे,
1: शीशा हो या दिल उसमें तो जो दीप्ति लगी है
0: वो बहुत अच्छा किया ना उसने, बहुत सुंदर किया, रीना रॉय का बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
1: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना आ जा
1: तीसरी मंजिल,
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया। अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं

0: मैं अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें कि वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ भी पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले,
0: डांस करवा तो वो एक सन इन सैन में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहाँ हमारा दिन भर चलता था। तब VHS का जमाना था
1: जी,
0: तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब। तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह। और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही, ये सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल ये सही, श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, उब गया वो भी उसने फिर वो रोका VHS मशीन, मैंने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप। फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
1: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
1: जी।
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बम्बई राजकमल में, हाँ
1: जी जी।
0: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ मंगेश देसाई के पास, तो मैंने कहा पिटाई करवानी है मंगेश देसाई, तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर से एकदम पूरा रील का रील बाहर, तो शर्म नहीं आती कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं मुझे भी बाहर फेंक देंगे तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब का
1: जी जी
0: वेरी वेरी नाइस कॉलेज, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बदूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा कहते फिल्म लेके आई है, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते, तो मैंने हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की, अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर बैठ जाओ दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो मतलब

0: शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं, बहुत प्यारा किस्सा। वो जो चश्मे बदूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं, बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यो करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो, और वो वहां से फिर भाग जाता है, बड़ा पानी पानी होकर शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यो क्या त्यों क्या हा? और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है वो उसमें मैया एक थी और वो मैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदू ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काव काव काव, और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी क्या बात है, मैं इतनी खुश हो गई इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक, तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही हम दोनों इतने खुश हैं लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं क्या पता, क्या कि शायद ही किसी के जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी है उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता, कोई बात नहीं तुम और मैं हम तो खुश है ना। इसी को कहते हैं कला का आनंद, हमने तो ये आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट वर्थ इट। तो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके रवि एंड राकेश बेदी वो ये करते हैं बेचारे हीरो को अपने फारूक को कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों क्योंकि है तो बेचारे अच्छे वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है, तो अब क्या करे, वो दोनों बहुत मायूस है। और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे है, कॉफी पी रहे है, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला
1: जी।
0: मैंने कहा वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे, बोलो वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया मुझे मालूम है। वो ओके फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई। कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेश जी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी ऐसा करें कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ये ले लो। अच्छा चलो। फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए ये भी

0: है कि आगे गई जी, जी. और फिर वो सारा झुमरी तलैया और ये सब सब वाला और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से वहाँ इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था. तो वो मैंने सारा पूरा का फर्स्ट टेक ओके हो गया और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली क्या बहुत खूब
1: तो, क्या बात है. लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया.
0: बिल्कुल. अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना. जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है ना.
1: बिल्कुल. इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है.
0: हाँ बहुत बहुत सुंदर है ना. बहुत संगीत और गीत भी. हाँ गीत मतलब

0: बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ, गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर, डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ, और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी काली सी, तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई है। अगर मतलब पूरा वो बैठ गया इतना, मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक, और फिर गाने वाले, और फिर मेरे एक्टर और मैं।
1: कमाल, ये गाना सुनते
0: जी, क्या बात।

0: जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया। हाँ। ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजे ही गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
1: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहाँ से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
0: जी, माहौल आप बनाते हैं उसमें।
1: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
0: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
1: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे और तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
0: बिल्कुल,
1: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या, मतलब मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा। मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं, और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावत प्रणय मोहब्बत, हाँ। वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हाँ?
0: बिल्कुल,
1: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
0: बिल्कुल, तो ये गाना इस अच्छा। इंटरव्यू में प्यार लगावत
1: सुनोगे।

0: फिल्म ओपन होती है हाँ। वो बड़ा शानदार
1: नामावली
0: है। जी नामावली जिसमें वो एनिमेशन वगैरह है जी।
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बहादुर दोनों
0: हाँ। और कथा में वो चूहा बिल्ली
1: हाँ यस टाइगर और ये वो और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग तो वैसा उन्होंने सींग बनाया उसके लिए तो वो बिल्कुल लगे ये बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे करके जाती है तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल दसवंदी का फूल। और विनी के लिए विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है चू चू चू चू चू चू नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश इनकी रेस तो फिर चलती रहती है
0: बिल्कुल। तो उसमें सारे अलग अलग
1: क्या और चश्मे बहादुर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए गांधी जी बर्ट्रेंड रसेल वगैरह ऐसे लोग लेके मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ।
0: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की
1: बिल्कुल
0: तो वो सुंदर है लेखक निर्देशक है ना इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है सुंदर मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: उन्होंने स्पर्श और चश्मे बहादुर और कथा सैनी ने की फिर दिशा के साथ वो नहीं आए बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे दोस्त भी बहुत अच्छे थे एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड और कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
0: कोई टकराव होता था
1: बहुत बार बहुत बार दिन में एक दो बार तो जरूर होता था लेकिन बहुत सही आदमी था बहुत काम से लगाव वाला आदमी था और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल और उसमें सैनी का बहुत हाथ था
0: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की। पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले आज की सभा के शेष रहे मुख्य कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। कार्यक्रम बच्चों के मुख से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मित्रता दिवस, किताबें मेरी सच्ची दोस्त और हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी विषय पर चर्चा। भेंट वार्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रिद्धि अग्रवाल से कहानी ईमानदार लकड़हारा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7:00।

रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10 बजे। रात 11 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए भी नजर मारी कल की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातःकालीन रेडियो तरंगों का आगाज होगा प्रातः के 5:51 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रामचरित मानस गान आप सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर, प्रातः के 6:40 पर सुनेगा कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम खेती में बात का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 6:50 पर।

प्रातः 7:20 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ दिन से का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 8:45 पर।

दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए। प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का। ये वो रिश्ता है जो बिना खून के भी दिलों को एक धागे में बांध जाता है। जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बच्चों के मुख से में। कार्यक्रम में कि हम शुरुआत करें एक ऐसे रिश्ते की जो बचपन की यादों में सबसे खूबसूरत रंग भरता है, वह दोस्ती का रिश्ता। तो बच्चों, बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले स्वीकार कीजिए आपकी दीदी पुष्पा सैनी का प्यार भरा नमस्कार। याद कीजिए बच्चों अपना बचपन, स्कूल की कक्षा, साथ ही बैठने वाला दोस्त, खेल के मैदान में साथ दौड़ना, टिफिन मिलकर बांटकर खाना, छोटी सी बात पर रुठ जाना और फिर कुछ देर में वापस दोस्त बन जाना। बचपन की दोस्ती में शायद इसी मासूमियत की वजह से एक अलग ही मिठास होती थी। और आज जब हम मित्रता के दिवस बना रहे हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि दोस्ती केवल साथ खेलने या फिर हंसी मजाक करने का नाम नहीं है। सच्चा दोस्त वह है जो हमारी खुशी में खुश हो, परेशानी में हमारा साथ दे और जब हम कोई गलत कदम उठाने जा रहे हैं तो हमें सही रास्ता दिखाने का साहस भी रखता हो। बच्चों के जीवन में दोस्तों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से उन्हें आत्मविश्वास बनाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उनमें सहयोग की भावना भी पैदा करता है। इसलिए बच्चों यह भी समझना जरूरी है कि दोस्त चुनते समय केवल यह ना देखे कौन उनके साथ मौज मस्ती करता है, बल्कि यह देखे कि कौन उन्हें अच्छी आदतों और अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, लेकिन है महत्वपूर्ण। दोस्ती में विश्वास जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है और एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। अगर कभी दोस्तों में मन मुटाव हो जाए तो बात बंद करने की बजाय बातचीत से उसे सुलझाना चाहिए। हम देखते हैं कितनी बार अगर बचपन में झगड़ा भी हो गया तो बड़े होते तक भी वो झगड़ा चलता रहता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है बच्चों। अगर उस वक्त कोई झगड़ा भी हो गया तो बैठ मिलकर बात तो कही क्या बात हुई, अगर दोनों से गलती तो दोनों दोस्तों को सॉरी बोलिए, बात वहीं खत्म। तो आइए आज अपने किसी खास दोस्त को दिल से कहें, तुम्हारी दोस्ती में बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको प्यारा सा नगमा।

0: और बच्चों इस प्यारे से गीत के बाद आपसे आपको मिलवाते हैं आपके एक नन्ही दोस्त से, देखते हैं कि आज वो आपके लिए क्या क्या लेकर आई है। तो आइए सुनते और मिलते हैं उनसे।
1: रिमझिम फुहारों ने धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है, कहीं मोर नाच रहे हैं तो कहीं मेंढकों की टर्टर सुनाई दे रही है, तो कहीं कागज की नावें पानी में तैर रही है। सावन का ये मौसम अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस मौसम में हमें अपनी सेहत और सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसी सुहाने मौसम की खुशबू और बच्चों से प्यार भरी बातें हम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है रिद्धि अग्रवाल। सबसे पहले स्वागत करते हैं रिद्धि अग्रवाल का। नमस्ते रिद्धि।
2: नमस्ते दीदी, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को सप्रेम नमस्ते।
1: आपका स्वागत है हमारे बच्चों के मुख से कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो रिद्धि आज आप क्या सुना रही है हमारे दोस्तों को?
2: तो मैं आज लाई हूँ एक कविता, मेरी माँ पे, तो सुनाओ सबको।
1: बिल्कुल सुनाइए।
2: मेरी माँ सबसे प्यारी है, दुनिया में सबसे न्यारी है, हर पल मेरा ध्यान रखती, सही राह पर चलना सिखाती। जब मैं उदास हो जाती हूँ, माँ मुझे प्यार से हंसाती है, मेरी हर छोटी बड़ी खुशी में वह हमेशा साथ निभाती है। उनका प्यार अनमोल है, ममता का कोई मोल नहीं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, उनसे बढ़कर कोई नहीं। थैंक यू सो मच। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, माँ का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है, तो प्लीज उस उपहार को हमेशा खुश रखिए और संभाल कर रखिए। थैंक यू।
1: बहुत अच्छी बात रिद्धि आपने कही है। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरा संसार बसता है। माँ की गोद सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है और उसकी मुस्कान हमारी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। रिद्धि आपने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कविता माँ के ऊपर आपने सुनाई है हमारे प्यारे बच्चों को। और आप क्या लेकर आई है हमारे दोस्तों को? मुझे लग रहा है आप कुछ और सुनाना चाह रही है।
2: हाँ जी बिल्कुल। तो मैं लेकर आई हूँ एक कहानी और वो कहानी बहुत मजेदार है, तो मैं सुनाना चाहूंगी। सुनाओ।
1: बिल्कुल सुनाइए।
2: ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था।

0: वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। रामू बहुत दुखी हो गया, उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक परी प्रकट हुई। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने पूरी बात सच सच बता दी। परी नदी में गई और पहले सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है
1: जी।
0: फिर परी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू ने फिर कहा, ये भी मेरी नहीं है। अंत में परी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से खुश होकर परी ने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में दे दी। सो अंत में शिक्षा हमको ये मिलती है, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो हमेशा आप ईमानदार बन के रहिए।
1: आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई दीदी की, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। बच्चों, आज की कविता और कहानी ने हमें एक सुंदर संदेश भी दिया है कि अच्छे संस्कार, प्रेम और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने माँ की ममता, त्याग और स्नेह के बारे में हमारे दोस्तों को बताया दीदी, और हमें विश्वास है कि इन सभी बातों को आप लोग अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने परिवार, विद्यालय और समाज में अपना नाम भी रोशन करेंगे। रिद्धि अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे बच्चों को इतनी प्यारी कविता और कहानी सुनाई। नमस्ते रिद्धि।
2: नमस्ते
3: बच्चों। हमारी धरती हमारा घर, जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं और अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस धरती की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, स्वच्छ हवा दी है, पानी, पेड़ पौधे, अनाज, फल फूल और जीवन के लिए जरूरी अनेक संसाधन भी दिए हैं। लेकिन क्या बच्चों, हम इन संसाधनों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना करना चाहिए? आज पर्यावरण के सामने अनेक चुनौतियां हैं। बढ़ता प्रदूषण है, पेड़ों की कटाई है, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, पानी की बर्बादी और ऊर्जा का अनावश्यक इस्तेमाल, ये सब हमारी धरती पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में बच्चों को छोटी उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना बहुत जरूरी है। उन्हें समझाया जा सकता है कि प्रकृति की रक्षा कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं होती है। आप छोटी छोटी आदतें डालकर भी प्रकृति में बदलाव जो आ रहा है उसको रोक सकते हैं। आप इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं, जैसे आवश्यकता न होने पर नल बंद करना, बिजली बचाना, कूड़ा इधर उधर न फेंकना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, पौधे लगाना और लगाए हुए पौधों की देखभाल भी करना। सबसे जरूरी बात है बच्चों कि केवल आप बड़ों को सही कि केवल उन्हें समझाएं नहीं, बल्कि स्वयं भी इन आदतों को अपनाएं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। हमारी धरती हमें लगातार देती आती है, अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। याद रखिए बच्चों, धरती केवल आज की पीढ़ी की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए संकल्प लें कि हम अपनी धरती को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि बच्चों धरती बचेगी तभी हमारा भविष्य बचेगा ना। तो पेड़ों की छांव, फूलों की खुशबू और नीला ही आसमान, आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो प्रकृति की सुंदरता को करता है सलाम।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: बच्चों, कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, ऐसा दोस्त जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर मुलाकात में कुछ नया सिखाता है और हमारे ज्ञान की दुनिया को लगातार बड़ा करता है। बचपन में किताबों से दोस्ती करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। कहानी की किताबें बच्चों की कल्पना को फंक देती है, विज्ञान की किताबें उनके मन में जिज्ञासा जगाती है और इतिहास की किताबें उन्हें अपने अतीत और महान व्यक्तियों से परिचित कराती है। आज के बच्चों के सामने मनोरंजन के अनेक साधन हैं। मोबाइल, टेलीविजन और इंटरनेट निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन इनके बीच किताब पढ़ने की आदत कहीं पीछे न छूट जाए, बस आपको इसका ध्यान रखना जरूरी है। किताबें पढ़ने से बच्चों न केवल जानकारी बढ़ती है बल्कि शब्द भंडार भी बढ़ता है, भाषा बेहतर होती है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है और साथ ही एकाग्रता भी बढ़ती है। माता पिता भी बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। घर में एक छोटा सा पुस्तक का कोना बनाया जा सकता है

बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार किताबें पढ़ने दी जा सकती है। और सबसे अच्छी बात, माता पिता स्वयं भी किताब पढ़े, क्योंकि बच्चे उपदेश से ज्यादा उदाहरण से ही सीखते हैं। और जरूरी नहीं कि बच्चा रोज घंटे किताबें पढ़े, शुरुआत के रोज 10-15 मिनट से भी शुरुआत की जा सकती है। और धीरे धीरे ये छोटा सा समय पढ़ने में एक सुंदर आदत बदल सकता है। देखिए बच्चों, किताबें हमें केवल परीक्षा के लिए तैयार नहीं करती, वे हमें जीवन को समझने के लिए भी तैयार करती है। वे हमें अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और विचारों और अनुभवों से परिचित भी कराती है। तो आइए बच्चों, मोबाइल की दुनिया के साथ साथ किताबों की दुनिया से भी जुड़ें और उन्हें ऐसा दोस्त दें जो जीवन भर उनका साथ निभाए। तो बच्चों, किताबें खोलिए और एक नई दुनिया में पहुंचिए। एक नई दुनिया भी खोल सकते हैं। तो आप बच्चों जरूर से जरूर किताबें पढ़े, कुछ ही मिनट के लिए। आप 10-15 मिनट पढ़िए, फिर आपकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो आप 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं। और बच्चों बात कर, देखो बारिश का मौसम भी चल रहा है। बारिश का मौसम जहां अपने साथ ठंडी फुहारे और हरियाली भी लाता है, तो कुछ सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी होता है, खासकर बच्चों आपके लिए। बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े देर तक ना पहने और जितनी जल्दी हो सके सूखे कपड़े पहन लें। बाहर का कटा फटा या खुला भोजन खाने से बचे और हमेशा बच्चों साफ, ताजा और गर्म भोजन ही खाएं। पीने के लिए स्वच्छ या उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें। और बच्चों बारिश के दिनों में जहां जहां पानी भर जाता है, ऐसे स्थानों पर मच्छर पनपते हैं, इसलिए आसपास सफाई रखें, मच्छरों से बचाव का उपाय अपनाएं। और बच्चों बिजली कड़कने के समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें। फिसलन वाली जगहों पर धीरे धीरे चले ताकि चोट न लगे। याद रखिए बच्चों, छोटी छोटी सावधानी हमें स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है, इसलिए बारिश का आनंद भी लीजिए, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ। देखिए बच्चों, बातें तो हम आपसे और भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, घड़ी की सुई हमें इसकी इजाजत नहीं देती। कोई बात नहीं बच्चों, फिर मिलेंगे और भी करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तब तक दीजिए आपकी दीदी पुष्पा सैनी को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। सभी सुनने वालों को मित्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम शुरू करते हैं दोस्ती से भरे इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी है आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
3: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था

0: अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देशभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मूज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्यभर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उभर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए ये संदेश।

0: हैं, ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजा अध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले के चिट्ठी। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
2: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आज मैं कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी में सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजसमंद और उदयपुर जिलों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे और सावन माह का पहला सोमवार कल प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष तैयारियां। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअली शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को हमेशा नशे से दूर और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में आप

0: राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जा रहा है और देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। आज के कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें माई भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों और आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी शामिल रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जयपुर में सुबोध कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा की शपथ दिलाई। उन्होंने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त, अनुशासित और विचारवान बनने का आह्वान किया।
2: नशा एक आग है, आग वो एक कोने को लगी और हवा उधर से आई तो सभी गांव के गांव जल जाता है। अब तो गांव में एक बाजू भी शुरू हो गई तो दूसरे बाजू भी लग जाएगी, इसलिए पूछना आवश्यक है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक नशा वाला, तो उसको पहले मुक्त करो, नहीं तो वो आग अपने घर तक भी आ जाएगी। इसका भी ध्यान रखो, वो समझ में भी नहीं आएगी।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ उदयपुर के नगर निगम ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से अधिक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत यूथ आइकन पोस्टर का भी विमोचन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को वर्चुअली सुना। सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय शांतिवन परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजसमंद जिले में 491 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों और राजीविका समूह की महिलाओं को चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनसेवा, पारदर्शिता और सर्वांगीण विकास के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: हमारी एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। किसान, मजदूर, युवा और महिला, लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है।
4: 2.5 साल पहले आपने जो हमारी सरकार को चुना था, विश्वास के साथ आपने चुना था और जिन वायदों को लेकर के हमने आपके बीच में गए थे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने उदयपुर में 421 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने उदयपुर को शक्ति और भक्ति की भूमि बताते हुए कहा कि राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर्यटन के लिहाज से समृद्ध जिले हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनका पुनर्वास करने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में बाल अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाओं और बालकों को सुरक्षित आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले। उन्होंने बालिकाओं के पुनर्वास के काम को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र को प्रौद्योगिकी आधारित भविष्य के लिए तैयार हथकरघा इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र

0: अगले 5 वर्षों में हथकरघा ज्ञान का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार विकसित करेगा, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा और देशभर में बुनकरों, संकाय सदस्यों और हथकरघा पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगा। गौरतलब है कि देश का हथकरघा क्षेत्र 35 लाख से ज्यादा बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। इनमें से करीब 70% महिलाएं हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। ये सम्मेलन हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्थिति को मजबूत करने में भी सहायक होगा। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देशभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देशभर से 100 से अधिक जीआई पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी स्पर्धा में कोटा की अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में ये पदक हासिल किया। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है। अरुंधति ने मीडिया से बातचीत में खुशी और उत्साह व्यक्त करते हुए अपनी जीत का श्रेय परिजनों और कड़ी मेहनत को दिया।
1: बहुत प्राउड हो रहा है। मुझे पता था कि डिसीजन मेरे ही इतना आने वाला है क्योंकि मैंने काफी टाइम से बहुत मेहनत करी है इसके लिए और 2024 का जब ओलंपिक्स मेरे हाथ नहीं आया था तब से ये सारे कॉम्पिटिशन मेरे टारगेट थे और आज इन्हीं कॉम्पिटिशन में अपने आपको पोडियम पे फर्स्ट नंबर पे देख रही हूँ। तो इमोशन अपने आप बाहर आ रहे थे कि कैसे कितना कुछ मिस किया है लास्ट 2-3 ईयर्स में, बट अभी सब कुछ अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। मैं बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाके और अपने मम्मी पापा को ये मेडल पहनाना चाहती हूँ। बिकॉज मैं उनको बताना चाहती हूँ जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया ना मेरे लिए उसका रिजल्ट मैं उनको दूंगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुंधति की इस जीत पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि कोटा में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
2: इस जीत का कोटा का गर्व सम्मान है, मैं उसके बधाई देता हूँ, उनके परिवार को बधाई देता हूँ। वो छोटी थी जब से बड़ी मेहनत कर रही है और आज उसका सपना पूरा हुआ है। अभी ओलंपिक में भी जीते और विश्व कप भी जीते, ये हमारा सपना है। बहुत बहुत शुभकामना है। खेल सुविधाओं के लिए कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सारे खेलों की सुविधा कोटा में, गांव शहर धानी और विद्यार्थी देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिता के अंदर मेडल जीत सके।
0: सावन माह का कल पहला सोमवार है। जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह कांवड़ियों के दल पवित्र सरोवरों से जल लाने के लिए पहुंचे हैं। जयपुर में तारकेश्वर जी और झारखंड महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के अन्य मंदिरों में भी प्रमुख शिवालयों में कई धार्मिक आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा में सुबह तेज बारिश हुई। पाली जिले में कई स्थानों पर तेज तो कहीं हल्की बरसात हुई। बारा से भी रुक रुक कर बारिश होने के समाचार हैं। उदयपुर जिले में कई स्थानों पर हुई तेज बारिश के बाद सीसारमा नदी 3.25 फीट बहाव पर चल रही है। पिछला झील में पानी की आवक जारी है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने आज उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश और जयपुर अजमेर तथा बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार कल से मॉनसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने से जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में बारिश में कमी होने की आशंका है। हालांकि 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजसमंद और उदयपुर जिलों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे और सावन माह का पहला सोमवार कल प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष

विशेष तैयारियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बूंदी जिले की चिट्ठी सुने। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों और धर्मों के व्यक्तियों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। इसे लेकर बीते दिनों जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बैठक ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों, शहर के गणमान्य नागरिकों और समाज सेवियों से चर्चा करते हुए यूसीसी के प्रावधानों की जानकारी दी गई और इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में सुझाव देने की अपील की। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सुझाव इकट्ठा करने की इस प्रक्रिया में समाज के हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जिले के कई गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इनमें हट्टीपुरा, गुड़ानाथावतान, रामनगर जाटान गांव शामिल थे। जिला कलेक्टर ने गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर यहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण, लाड़ो प्रोत्साहन योजना और GSY के लंबित भुगतान तुरंत करवाने के निर्देश दिए। बीते दिनों राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ जनहित के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिले में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना के तहत कार्यरत अकुशल श्रमिकों के हित में कार्यस्थल के समय में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। नए आदेशों के अनुसार अब श्रमिकों के लिए काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किए गए। विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में पहुंचकर पदाधिकारियों ने संतों, महंतों और गुरुओं का विधि विधान से अभिनंदन किया। पिछले दिनों जिले में नशा मुक्त फॉर युवा विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने जिले के युवाओं से माई भारत पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कर प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आह्वान किया। कोटा के संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बीते दिनों नैनवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय, राजस्व न्यायालय और न्यायपालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीते दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश परनामी ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विचाराधीन बंदी गण से मुलाकात कर उनके मामलों के बारे में जानकारी ली। साथ ही वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जिले के 18 उत्कृष्ट चिकित्सकों और मृत्यु के बाद देहदान करने वाली 2 महिलाओं के परिजनों का अभिनंदन किया गया। सोसाइटी के चेयरमैन राजेश कृष्ण बिड़ला ने देहदान करने वाली महिलाओं के काम को अनुकरणीय बताते हुए उनके परिजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बूंदी रेड क्रॉस शाखा से जिले में व्यापक स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाकर समाज को व्यसन मुक्त बनाने का आह्वान किया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने समारोह को सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा यातायात, जाप्ता, बैंड सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आवागमन और परिवहन, मोबाइल, टॉयलेट, मेडिकल टीम, पेयजल, अग्निशमन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहली आज री खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत रो लगस हासिल करवा खातर युवा वासु शारीरिक रूप में चुस्त, मानसिक रूप में मजबूत और आत्मविश्वास सु भरपूर रहबा ने कया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ राजसमंद और उदयपुर जिला में 900 करोड़ रूपया सु बत्तीरी लागत रा विकास कामारो लोकार्पण करिया और नींव राखी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला। और सावन मारो पहलो सोमवार काल प्रदेश भर शिव मंदिर में खास तैयारियां।

0: समाचार आरे सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के विकसित भारत खातर मोटियारा ने शारीरिक रूपों स्वस्थ मानसिक रूपों मजबूत और आत्मविश्वासी व्यंग चाहिए जे। आज नई दिल्ली में विकसित भारत खातर नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान री वर्चुअल शुरुआत करता थका वे कया के युवावा ने हमेशा नशा सु दूर और स्वस्थ जीवन शैली अपनावनी चाहिए।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री कया के नशा मुक्ति खातर 100 हफ्तारों जन भागीदारी अभियान शुरू करियो जा रियो है, जिनमें प्रदेश भर माए हर दीतवार ने साप्ताहिक कार्यक्रम वेला कार्यक्रम माए 28,000 ठोड़ा सो 1 करोड़ सो 32 युवा भाग लेना। इनमें भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना रा स्वयं सेवका रह सागे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय युवा क्लब गैर सरकारी संगठन और आध्यात्मिक संगठनारा प्रतिभागी शामिल वेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज जयपुर सुबोध कॉलेज में राख्या कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प अभियान रे तहत नशा मुक्त युवारी शपथ दिलाई। वणा छात्रा रह सागे प्रधानमंत्री रो संबोधन भी सुनिया। वणा युवा वासु नशा मुक्त अनुशासित और विचारवान बनबा ने कया
2: नशा एक आग आग वो एक कोने को लगी और हवा उधर से आई तो सभी गांव के गांव जल जाता है। आपके गांव में एक बाजू भी शुरू हो गई तो दूसरे बाजू भी लग जाएगी, इसलिए पूछना आवश्यक है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में तुम्हारे गांव में तुम्हारे नजदीक नशा वाला तो उसको पहले मुक्त करो, नहीं तो वो आज अपने घर तक भी आ जाएगी। इसका भी ध्यान रखो, वो समझ में भी नहीं आएगी।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा युवा मारे सागे उदयपुर नगर निगम ऑडिटोरियम में वीसी जरिए प्रधानमंत्री को संबोधन सुनिया। इन मौके मुख्यमंत्री कया के राष्ट्र निर्माण में युवावारी महत्व भूमिका है। मुख्यमंत्री कया के राज्य सरकार मोटियारा ने नशा सु दूर राखबा खातर प्रभावी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षण संस्थाना में नशीला पदार्थारी रोकथाम खातर 350 सु 32 कॉलेजा में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। वे बताया कि अभियान में चोखो योगदान देबावाड़ा स्वयं सेवका और संगठना ने 50वां 75वां और 100वां सप्ताहरा पड़ाव माथे सम्मानित करियो जावेला। इन दौरान मुख्यमंत्री युवावा ने नशारी लत सु दूर रहबारो संकल्प भी दिलायो, साथ ही नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत यूथ आइकन पोस्टरों विमोचन भी करियो। प्रदेश नेहरा जिला में राख्या कार्यक्रम में बड़ी तादाद में मोटियार प्रधानमंत्री रा संबोधन ने वर्चुअल सुनिया। सिरोहीरा आबूरो रा ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय शांतिवन परिसर में भी कार्यक्रम राख्यो गयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राजसमंद जिला में 491 करोड़ रूपया सो 32 लागत वाला न्यारा न्यारा विकास कामारो लोकार्पण करियो और नींव राखी। इन मौके वना सामाजिक सुरक्षा योजना रा लाभार्थियां और राजीविका समूरी महिलावा ने चेक भी बांटिया। कार्यक्रम में संबोधित करता थका श्री शर्मा कया कि राज्य सरकार जन सेवा पारदर्शिता और पूरा विकास रह सागे समाज रा हरेक वर्ग रा विकास खातर लगातार काम कर रही है।
3: हमारी एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। किसान मजदूर युवा महिला लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है। 2.5 साल पहले आपने जो हमारी सरकार को चुना था विश्वास के साथ आपने चुना था और जिन वायदों को लेकर के हमने आपके बीच में गए थे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
0: इनसे पहले मुख्यमंत्री उदयपुर में 421 करोड़ रूपया रा कई विकास कामारी सौगात दी। वना उदयपुर ने शक्ति और भक्ति री भूमि बताता था।

0: ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਮੰਦ ਉਦੈਪੁਰ ਔਰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਪਰਯਟਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਰੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਹੈ। ਇਨ ਹਲਕਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਮਰ ਕਸ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਮਾਥੇ ਭੀਕ ਮੰਗਬਾ ਵਾਲਾ ਟਾਵਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨਿਤ ਕਰਵਾਰੋ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਵਾ ਔਰ ਵਾਨੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਸੇ ਜੋੜਵਾ ਖਾਤਰ ਜੈਪੁਰ ਮਾਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਵੇਲਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਚਿਵਾਲਯ ਮਾਏ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਰੀ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਔਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਕਸ਼ਾ ਔਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਵਣਾ ਟਾਬਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੂ ਕਰਬਾਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਆ। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला। इन केंद्र ने प्रौद्योगिकी आधारित भविष्य खातर तैयार हथकरघा इकोसिस्टम रा निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। करीब 12 करोड़ रूपया लागत सू बनवा वालों ओ केंद्र आवता 5 वर्षा में हथकरघा ज्ञान रो एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार विकसित करेला। एआई सक्षम उपकरण बनावेला, बेहतर करघा प्रौद्योगिकी ने विकसित करेला, पेटेंट और अनुसंधान ने बढ़ावो देवेला, स्टार्टअप ने प्रोत्साहित करेला और देशभर रा बुनकरा संकाय सदस्या रा हथकरघा पेशवरा ने प्रशिक्षित करेला। ध्यानजोग है कि देश रो हथकरघा हलको 35 लाख सू बत्ता बुनकरा और इनसू जुड़िया मजूरा ने रोजगार देवे है। इनमाए करीब 70% महिलावां है। राष्ट्रमंडल खेला माए मुक्केबाजी होड़ माए कोटारी अरुंधति चौधरी सोनारो तमगो जीतर इतिहास रच दिनो। वना 70 किलोग्राम वर्ग रा फाइनल मुकाबला माए ओ पदक हासिल करियो। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए मुक्केबाजी रो स्वर्ण पदक जीपा वाली प्रदेश री पहली महिला बॉक्सर है। अरुंधति मीडिया सू बातचीत में खुशी और उत्साह जताता था का आपरी जीत रो श्रेय आपरा घराला और कड़ी मेहनत ने दिनो।
1: बहुत प्राउड हो रहा है, मुझे पता था कि डिसीजन मेरे ही इसमें आने वाला है क्योंकि मैंने काफी टाइम से बहुत मेहनत करी है इसके लिए और 2024 का जब ओलंपिक्स मेरे हाथ नहीं आया था तब से ये सारे कॉम्पिटिशन मेरे टारगेट थे और आज इन्हीं कॉम्पिटिशन में अपने आपको पोडियम पे फर्स्ट नंबर पे देख रही हूँ। तो इमोशन अपने आप बाहर आ रहे थे कि कैसे कितना कुछ मिस किया है लास्ट 2-3 ईयर्स में, बट अभी सब कुछ अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, मैं बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाके और अपने मम्मी पापा को ये मेडल पहनाना चाहती हूँ। बिकॉज मैं उनको बताना चाहती हूँ जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया ना मेरे लिए उसका रिजल्ट मैं उनको दूंगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अरुंधति री इन जीत माथे वाने बधाई देता थका कया के पूरा देश उन माथे गर्व कर रियो है। वना कया के कोटा माए खेल री सुविधावा ने बढ़ावा खातर लगातार कड़ी कोशिश करी जा रही है।
2: इस जीत का कोटा का गर्व सम्मान है, मैं उसके बधाई देता हूँ, उनके परिवार को बधाई देता हूँ। वो छोटी सी जब से बड़ी मेहनत कर रही है और आज इसका सपना पूरा हुआ है। अभी ओलंपिक में भी जीते और विश्व कप भी जीते, ये हमारा सपना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं खेल संघाओं के लिए। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सारे खेलों की सुविधा कोटा को गांव शहर धानी और जाति देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिता के अंदर मेडल जीत सके।
0: काल सावन रो पहलू सोमवार है। जयपुर समेत प्रदेश का खास शहरा राशि मंदिरा माए खास पूजा अर्चना की तैयारी करी जा रही है। ठोर ठोर कावड़ियारा दल पवित्र सरोवर सो जल लाबा खातर पू गया है। जयपुर माए ताड़केश्वर जी और झारखंड महादेव मंदिर समेत न्यारा न्यारा शिवालया माए श्रद्धालुआरी भारी भीड़ चालता प्रशासन खास इंतजाम करियो है। प्रदेश में न्यारी न्यारी ठोड़ा माए आज हल्को में बरसियो। भीलवाड़ा माए सुबारे सु तेज पानी बरसियो। वठी नेपाली जिला माए कई ठोड़ा माथे तेज तो कटे कटे हल्की बरसात भी। बारा सुबह रुक रुक कर बारिश होबारा समाचार है। उदयपुर जिला माए कई ठोड़ा माथे तेज बारिश के पाछे सिसारमा नदी 3.25 फीट बहाव माथे चल रही है। वठी ने पिछोला झील माए भी पानी री आवक जारी है। इन बीच मौसम केंद्र जयपुर आज उदयपुर और जोधपुर संभाग रा कुछ हल्का माए छितराई तो कटे कटे तेज बारिश रो अंदाजो जतायो है। सागे ही जयपुर अजमेर बीकानेर संभाग रा कुछ एक भागा माए मेह बरस सके है। महकमारे मुजब कालसू मानसून ट्रफ लाइन रा उत्तर ईकाने शिफ्ट होबा सू जोधपुर उदयपुर और कोटा संभाग रा जिला माए बारिश री कमी रा आसार है। हालांकि 3-5 अगस्त दौरान बीकानेर संभाग शेखावाटी

का जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज बह सके है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत और लगस हासिल करवा खातर युवा वसु शारीरिक रूप से चुस्त मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहवा ने कया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद और उदयपुर जिला में 900 करोड़ रूपया से बत्तीरी लागत विकास काम और लोकार्पण करिया और नींव राखी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला। और सावन मारो पहले सोमवार काल प्रदेश भरा शिवालया में खास तैयारियां। इन रसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो वहां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

पर सार नो काम करे अंत की प्रभावित जो पोथू है ये पीरा कलर नो तथा हरा धब्बा वाला थई जे गंभीर अवस्था जो इरा थई जाए तो ये पौधे नी सभी पत्तियां पीली पड़ी जी ने फूल ने फलन ने था सफेद मक्खी के कारण पौधों जो है ये काजल जो कारो बनी जाए सफेद मक्खी ना जो स्त्राव रहे ना पदार्थ ने कारण था आज ये कालोपन है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ने प्रभावित करे ने गंभीर संक्रमण में पौधे हुकाई जाए जिनते की उपयोग माते प्रभाव पड़े ने फलियों ने संख्या ने आकार में भी कमी आवे। एक है हरा तेला आज कीट है आना भी वयस्क ने निम्क पत्ती ने निचली सतह माते समूह में रहे ने एक तरफ सालू सालू करे निम्क ना मुख्य लक्षण है ने वयस्क जो है ये उड़ी सके निम्क ने वयस्क पत्ती ने रस चूसी ने पौधा ने नुकसान पहुंचावे ने रस चूसते टाइम पौधा ने अंदर विषाक्त पदार्थ पहुंचावे संक्रमित जो पौधो है ये हल्को पीरू पड़ जाए ने पत्ती नो रंग हल्को लाल हो थी जाए ने पत्तिया नीचे नड़ी नमी जाए ने बाद में हुकई से। एक कीट है चक्र भंग वयस्क माटा जेरे ई तना ने माते बे समांतर चक्र बनावे ने निचलो जो चक्र है ये थकी कुछ ऊपर तीन छेद बनावे ने सप्त की बड़ा जो छेद है इनमें ही अंडा ले जिन्हें कारण तना नो जो ऊपर नो भाग है ये पड़ी जाए तना ने अंदर सुंडी ने ऊपर तथा नीचे आड़ी खाए जिनते की तनो जो है ये अंदर की खोखलो थी जाए जिनते की पौधो जो है इनो तनो या इन कही तो संपूर्ण पौधो नष्ट थी जाए। एक आवे तना मक्खी आ मक्खी जो है ये मेट पत्ती न ऊतक में प्रवेश करी ने आगाड़ी बढ़े ने मध्य शिरा तक पोसी जाए अंत में पत्ती ने जो डंठल है इन्हें माध्यम थकी तनाने में प्रवेश करे ने जेन थकी टेढ़ी मेढ़ी लाल रंगनी सुरंग बनावे ने मैंट जाइलम ने फ्लोएम में खाई जाए जेन थकी पौधा की वृद्धि रुकी जाए जेन थकी उपज भी कम थे मैंट जे पौधा की प्रारंभिक अवस्था में संक्रमण करे तो पौधा की पत्तियां अगले सिरे ने आई मुरझाई जी मैंट जईरा वयस्क बढ़े तो जे छिद्र थकी बाहर निकले इन्हें पौधा ने माते अपने दीखी शक रीते। एक कीट है अर्धकुंडलक अर्धकुंडलक जो है इन आक्रमण सोयाबीन की फसल ने पत्ता रहित करना के आन जो सुंडी रहे इना जे शरीर ने माते तीन जोड़ी प्रोलेग मले आ कीट जो है इन्हें सुंडी अगड़ी गति करे तो चक्र बनावे जो आनो मुख्य लक्षण है आनी जो सुंडी है ये पौधा ने मध्य भाग में पत्तियां ने खाव सालू करे ने ऊपर की अड़ी बड़ी करे सुंडी ने जो अंतिम अवस्था है ये खूब वजह खाए ने पत्तियां ने केवल बड़ी शीरा है ईस बची जाए। एक है तंबाकू सुंडी मादा तितली पौधों में मत अंडा वाले जे बाल जे वह रेशा थकी ढाके लरे अंडा ने निकलवाने बाद पहली वक्त इमस्टार सुंडी झुंड के रूप में एक हाथे पत्तियों ने खाए पत्तियों ने सिर्फ मध्य सिरा ने सोड़े सुंडियों ने मुख्य रूप थकी रात ने टिम मते बगैर खाए बाद में जी अवस्था रही ये पौधा ने सभी भाग ने खाए ने दिन टाइम मते पौधा ने पाए मिट्टी ने में छिपी जाए ने पौधा ना नए भाग ने दिखाई जिनकी 50% फलियों ने नुकसान थी जाए। किसान भाई सोयाबीन जो है इन कीट ने नियंत्रण व्यवस्था खेतर ने ग्रीष्मकाल में गहरी जुताई करवी जुए जल्दी बुआई करवा मते कीटों ना प्रकोप कम था। सोयाबीन की फसल ने चारे तर प्रपंच फसल जो है जिनकी अरंडी की फसल है आदि ने बुआई करवी जुए ने इन मत लगेला कीड़ा अंडा इन सब नष्ट कर दे। प्रकाश पाश ने 10-12 फेरामोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर ने दर थकी उपयोग करीने वयस्क तितलियों ने इकट्ठा करीने नष्ट करी शक। चिड़िया ने व्यवहारू खेतर ने में टी आकार नो खरपच्ची लगाड़ने सुंडी की संख्या ने कम करी शक। आवी रीति किसान भाइयों आना कीड़ा ने माते नियंत्रण करी शक ने अन्य फसल ने

सभी किसान श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेतीबाड़ी सुनबाला सगला श्रोतावा ने करसा भाई बहना ने और दूर दराज गांव ढाणी में चौपाल सुनती मारी सगली सखी सहेलिया भेड़ा और भाईला ने मधु नायक रो घणो मोकड़ो राम राम सा और अश्विनी भाई आपने भी खूब खूब राम राम सा
1: मधुबेन थाने भी घणो घणो राम राम और सुनबाला सभी किसान भाई ने घणो घणो राम राम।
0: अश्विनी भाई चाहे खेती किसानी हो या कोई भी काम हो हर दिन को हर घंटा को हर महीना को अपनो एक खास महत्व हुआ करे है और जब बात खेती किसानी की हो तो यो महत्व और ज्यादा बढ़ जाया करे है क्योंकि खेती किसानी के मायने हर महीनो एक अलग मौसम ले रावे है हर महीनो एक अलग मिजाज ले रावे है अलग तापमान ले रावे है और अपना आप बहुत सारी बातें समेटर हर महीनो ले रावे है और यो जो महीनो है अगस्त रो तो यो आपने जो बिरखा ऋतु है ये को एक खासो टेम है और ई महीना में बहुत चारों पानी हरियाली भी रेवे है और खेती किसानी का मायने बहुत सारा बदलाव आपने देखवाने मिले हैं जो आपने फसल है भी ई टाइम जो है वृद्धि की ओर रेवे है जो आप बोर रखा हा तो जो खरीफ फसल है वे वृद्धि की ओर रेवे है तो ई टाइम आपने कौन कौन सा काम की तरीका से करना चाहिए के सावचेती रखनी चाहिए तो ई बारे में आप थोड़ी चर्चा कर लिया।
1: बिल्कुल बड़ी सही बात बताया कि ई महीना में वर्षा होबा के कारण देखो खेता में हरियाली छा जाए छे और खरीफ फसल अच्छी तरह बढ़बा लग जाए छे इसलिए अगस्त को महीनों किसानों के लिए बहुत ही अत्यंत और व्यस्त महत्वपूर्ण माने गए छे और जटे आप बात कराई कि महत्व की मैंने की तो देखो अगस्त में मानसून पूरा प्रभाव में रहे खेता में नमी पर्याप्त हो जाए जिससे फसल की वृद्धि तेजी से होबा लग जाए छे और इस समय देखो किसान भाई धान मक्का बाजरा ज्वार सोयाबीन मूंगफली कपास और अन्य खरीफ फसल के कई प्रकार की देखभाल भी कर जा में और अच्छी वर्षा होबा मारा किसान प्रसन्न हो छे क्योंकि ई महीना में इस फसल ने काफी पैदावार बढ़वा की संभावना ज्यादा रहे
0: तो ये जो अगस्त रो महीनो है ना इनमें जो किसान ने थोड़ी देखभाल ज्यादा करनी पड़े है क्यों जो आप अभी फसल बताया कि जो मक्को है बाजरो है ज्वार है सोयाबीन मूंगफली कपास ये में कही है कि बढ़वार जो है

0: एजी से एटीएम हो गए तो बाकी उचित देखभाल एटीएम बहुत जरूरी हो गए है। सागे सागे खेत में कटे पानी तो कोनी भरगो या निकासी की व्यवस्था चौकी है या कटे पानी कम तो कोनी कटे सिंचाई की तो आवश्यकता कोनी तो या फिर कटे मान लो बिरखा ज्यादा होगी तो कई बार पानी भर जावे है निकासी चौकी कोनी हो तो पौधा की जो जड़ा है ना वह सुरक्षित रहे आ सब बातों को बहुत अच्छी तरीका ध्यान रखना पड़े है।
1: और देखो ये महीना में अगर बरसात ज्यादा हो ना तो महीना में बरसात ज्यादा होबा के कारण जो आपने जो किसान भाई का खेत है वहां खरपतवार भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़े से और यह खरपतवार फसला में पोषक तत्व और पानी छीन ले से जिसे उत्पादन कम हो सकते है। इसलिए किसान भाइयों इस समय अपने निराई गुड़ाई भी आपने मौसम में करते रहना चाहिए जिससे खेत साफ रहे और पौधा ने पर्याप्त पोषण मिलते रहे और आप अच्छी फसल ले सका।
0: भाई निराई गुड़ाई की आप बहुत चौकी बात बताई। अब एक सागे सागे अगर आप बात कर लिया जो आप उर्वरकों को जो उपयोग कर रहा है या कई बार जो आप किसान है बिना वैज्ञानिक की सलाह के या बिना सिफारिश के जो रासायनिक को भी उपयोग कर रहे हैं तो कन्नो आपने कहीं चाहिए कि जो आपने खेत की माटी है जो आपने फसल है बीकी आवश्यकता अनुसार आपने जट तक संभव हो पहली तो जैविक उर्वरक को ही आपने उपयोग करना चाहिए। फिर आपने लाग रहे हो कि साफ तारी बन पड़ रही आपने कोई कीट पतंगो लाग गयो है या आपने रासायनिक उर्वरक के बिना पार कौन पड़ रही तो पहले आप विशेषज्ञ की राय लेवा बीके पक्षे ही आप रासायनिक उर्वरक को उपयोग करा। और इनमें खास बात यह है कि मात्रा जो बता रहे हैं ना विशेषज्ञ उस संतुलित मात्रा में ही पौधा ने आपने उर्वरक देना चाहिए क्योंकि आप कई बार रासायनिक उर्वरक को अगर ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो आपने जो माटी है ना बी को जो स्वास्थ्य है विपक विपरीत प्रभाव पड़े है आप मानव स्वास्थ्य है वी पे भी विपरीत प्रभाव पड़े है और जैव पारिस्थिति की जो तंत्र है उस पे भी प्रभाव पड़े है।
1: बिल्कुल। और देखो मधुबन जो आपने कई किसान भाई जो ई मौसम के माने सब्जियां की भी खेती करे जाए तो ई महीना में जो किसान भाई कई प्रकार की जहाँ सब्जी करे जी के माने आप बात कर सका था लौकी हुई तोरी हुई भिंडी हुई बैंगन हुई टमाटर मिर्ची फूल गोभी यहाँ की आप खेती करे तो बरसात के कारण देखो आज जो सब्जियां की आप बात कर रहे थे ना हम कई प्रकार का रोग और कीट बहुत जल्दी लग जाए फैल जाए इसलिए आगे नियमित अपने किसान भाई ने निगरानी भी करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार सिंचाई जल निकासी तथा दवाइयों को प्रयोग भी अपने करते रहना चाहिए।
0: और ई महीना के मायने जो दलहनी और तिलहनी फसला है ना जैसे मूंग उड़द सोयाबीन मूंगफली यहाँ को अपने खास विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अब भाई देखो बात आप खूब कर रहे हैं कि अगस्त का महीना में अपने के करना चाहिए पर ये सब जो जानकारी चर्चा आप कर रहे हो ना एक सागे सागे अगर मनोरंजन की बात भी थोड़ी कर लिया तो क्या रहे
1: बिल्कुल ठाकुर सारो समझ रहा तो सुना गीत

0: ये सुंदर सुलोक गीत आप सबका रेडियो सेट तक, और आप सब में उम्मीद है कि चोखल भाई उसी। और देखो आशा बहन आगी है ये गीत के सागे सागे, और विशेषज्ञ जो है अपना डॉक्टर राजेश सैनी जी वे भी सागे आ गया है। तो कहीं आप बूंद बूंद सिंचाई यानी कि सूक्ष्म सिंचाई का माध्यम से आप कहीं चोखू उत्पादन कर सका हाँ और जल बचत कर सका हाँ, ये विषय पर आप लेवा जानकारी। तो आशा बहन समारोह माइक में ओड़खाण कराओ और दिलाओ जानकारी।
1: श्रोतावा आज अपने साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर राजेश कुमार सैनी, आप हरित गृह विशेषज्ञ एवं इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं, और आज आप यहाँ से बात करना सिंचाई की सूक्ष्म विधियों का बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: जी हाँ, की डॉक्टर साहब आप आज बात करना, सबसे पहले तो काश्तकार भाइयों ने मोटा तौर पर बताओ सा की कौन कौन सी सूक्ष्म विधियां छे जाने काश्तकार भाइया काम में ले सके छे सिंचाई के।
2: किसान भाइयों, जब हम सिंचाई की सूक्ष्म विधियों की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से चार विधियां आती हैं, जैसे फवारा पद्धति जिसको कि आप स्प्रिंकलर कहते हैं, छोटा फवारा पद्धति जिसको कि आप मिनी स्प्रिंकलर कहते हैं, और तीसरा जो है रेन गन आज काफी चलन में है, और ज्यादातर जो किसान भाई आज अपना रहे हैं वो है ड्रिप इरीगेशन, जो है समय की मांग।
1: तो देखो सर डॉक्टर साहब, आप जी को प्रदेश जो वही पानी की कमी है, और काश्तकार भाई ने जब यहाँ सूक्ष्म सिंचाई विधियां को अगर जानकारी हो तो वे कम मात्रा में पानी न काम ले चोखू उत्पादन ले सके जाए। अब आप सुन जान बोचाओ ना सा कि सबसे पहले तो आप यही बताओ भाई जो सबसे ज्यादा कारगर विधि है ना वह कसी है, और क्यों आपने यहाँ सूक्ष्म सिंचाई विधियां की काश्तकार भाई ने जरूरत पड़ी।
2: किसान भाइयों, शुरू में जो हम सिंचाई करते थे वो भोरों से करते थे, चैनल से करते थे, परंतु जैसे जैसे पानी की कमी होती गई यानी कि भू जल स्तर जमीन में नीचे जाता गया, वैसे वैसे हमें नई सिंचाई पद्धति के बारे में सोचना पड़ा, और चलन में आई फवारा पद्धति, उसके पश्चात और पानी अगर डाउन गया तो फिर मिनी स्प्रिंकलर्स की बात करने लगे हम लोग, फिर रेन गन की बात करने लगे, और अब बात करते हैं हम ड्रिप इरीगेशन की, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र। हर बूंद की अपनी एक कीमत है, और हर बूंद से हम हमारे जो किसान भाई है ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं। समय आ गया है बूंद बूंद सिंचाई तंत्र प्रणाली को अपनाने का, और हमारे बहुत सारे किसान भाई इसे अपना भी रहे हैं। तो स्प्रिंकलर में तो फवारा पद्धति होती है, जैसे कि आपने समझ लीजिए आप आपका जो पानी का स्रोत है वहां पे पंप सेट लगा के पाइप बिछा के और फवारा लगा के हम पानी को कृत्रिम वर्षा के रूप में गिराते हैं
1: जी।
2: और उससे जो छोटे फवारे आ गए जो कि ऊंचाई में छोटे होते हैं तो उन्हें मिनी स्प्रिंकलर कहा जाने लगा, और इनको भी फवारा पद्धति के रूप में ही काम में लिया जाता है। और फिर रेन गन जो है, रेन गन है वो भी एक प्रकार का, जैसे कि आप बोलते हैं रेन और गन, रेन मतलब बरसात, कृत्रिम बरसात करा रहे हैं हम, एक तरह से बरसात हो रही है, वास्तव में बरसात नहीं है लेकिन

0: फव्वारा पद्धति के द्वारा बारिश की जा रही है और इसमें क्या हो रहा है कि आपको उच्च दबाव बनाया जाता है पानी के ऊपर और उसके बाद में बौछार की जाती है। इसमें क्या होता है, पानी की बचत होती है और भूमि का जो सिंचन करने का इलाका है वो बढ़ जाता है और खरपतवार कम होती है, ऊर्जा की बचत होती है। ये कुछ फायदे हैं जिसको ध्यान में लेके सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लोग अपना रहे हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, मोटा तौर पर आप जिया की चार विधियां को नाम बताया, जो स्प्रिंकलर फव्वारा, छोटा फव्वारा, रेन गर और बूंद बूंद सिंचाई। अब आपसे यह जानवाला आप कि बूंद बूंद सिंचाई जो तंत्र छे वो काई छे, किया कर काश्तकार भाई को उपयोग करे छे और किया कर यो कारगर हो छे।
0: किसान भाई, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि पौधे की जड़ों के पास में बूंद बूंद पानी गिराया जाता है, जिससे कि पौधे को जहां जरूरत है, सबसे ज्यादा पौधे को पानी की जरूरत होती है जड़ों में, और उधर जब बूंद बूंद के रूप में वहां पानी गिराया जाता है तो उस प्रणाली को हम बूंद बूंद सिंचाई तंत्र कहते हैं। इसमें जो है पाइपों का एक जाल बिछा दिया जाता है पूरे खेत के अंदर और उसके द्वारा फिर ड्रिपर्स लगा के अंत में जो पॉइंट होता है उसको ड्रिपर्स कहते हैं, उसके जरिए पौधों की जड़ों में पानी दिया जाता है। और इसके साथ हम कई बार के उर्वरक भी मिला के दे देते हैं, पानी में घुलनशील होने वाले उर्वरक, जैसे कि 1919 हो गया, 13045 हो गया, 05234 हो गया, 0050 हो गया, ये सब चीजें भी हम मिला के दे देते हैं। कई बार हम कीटनाशी जो होते हैं उनको भी मिला के हम पौधों की जड़ों तक पहुंचा देते हैं। तो ये सब फायदे हैं जो कि हमारे बूंद बूंद सिंचाई तंत्र से हम प्राप्त कर पाते हैं। और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में हम बहुत सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, जैसे पानी की बचत होती है, उर्वरकों की बचत होती है, कीटनाशकों की खपत काफी हद तक कम होती है क्योंकि जहां हमें देना है वहां हम पानी के जरिए उनकी जड़ों तक पहुंचा पाते हैं। भूमि की बचत होती है क्योंकि आमतौर पर अगर हम परंपरागत खेती करते हैं तो उसमें धोरे बना के जब हम सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी की अधिकता लगती है और उसके धोरों में ही काफी जमीन खराब हो जाती है। वहीं अगर आप बूंद बूंद सिंचाई तंत्र को अपनाते हैं तो 5 से 7% तक हमें ज्यादा जगह मिल जाती है जिसमें हम खेती कर पाते हैं। खरपतवार में काफी हद तक कमी आती है क्योंकि जो खरपतवार है, अनावश्यक जो बीज है, उनको पानी मिल ही नहीं पाता तो वो उगी नहीं पाते। तो ये कुछ चीजें हैं। ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि जब आप ओपन में जब धोरों से पानी देते हैं तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी निकालना पड़ता है जमीन से, उसमें काफी ऊर्जा खर्च होती है। पर बूंद बूंद सिंचाई में एरिया भी काफी ज्यादा कवर हो जाता है और साथ में हमारा ऊर्जा का खर्च भी कम आता है। तेज हवाएं अगर चल रही है तो भी हम जहां स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर को चलाने में हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वहीं बूंद बूंद सिंचाई तंत्र में हम आसानी से पौधों को सिंचाई कर सकते हैं और दवाई या फिर हमें उर्वरक देने तो वो दिए जा सकते हैं और सरकार के द्वारा इस पे अनुदान भी है। और मैं तो ये कहूंगा कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली को लगाना, काम में लेना और उसका रख रखाव करना भी काफी आसान है
1: जी। तो काश्तकार भाई, देखो डॉक्टर साहब अपन ने बता दिया भाई बूंद बूंद सिंचाई तंत्र और उनका फायदा काई छे, किन तरीका से कितना मोटा मोटा फायदा छे, अगर थोड़ी सी समझदारी से आप इन्हें काम में लेवा तो, और सरकार भी पर अनुदान देवे छे तो आप पूरी जानकारी ले ई अनुदान को भी फायदो ले सको छो। अब डॉक्टर साहब, जब आप बूंद बूंद सिंचाई की बात करी रहे छा तो आपसे यह भी जान बुझाऊ ना भाई, ई का जो मुख्य घटक छे वे काई छे, बताओ समग्र काश्तकार भाई ने।
0: किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र के मुख्य घटक जो है उसमें हम सबसे पहले बात करें तो पानी का स्रोत। पानी का स्रोत क्या है, कुआ है या फिर बोरिंग है या तालाब है या टंकी है या किससे आप पानी दे रहे हैं। दूसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर, जिसमें कि हम हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर की बात करते हैं, हम सैंड फिल्टर की बात करते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी फिल्टर की बात करें तो उसमें स्क्रीन फिल्टर या फिर डिस्क फिल्टर, तो ये चीजें हैं। वाल्व की बात करें तो कंट्रोल वाल्व, जिससे कि पानी का आवागमन को हम नियंत्रित करते हैं। फ्लश वाल्व, जिससे कि हम हमारी जो पाइपें हैं उसमें अगर काई कचरा अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए जो हम वाल्व इस्तेमाल करते हैं उसको फ्लश वाल्व कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने से पूर्व पाइपों में कुछ हवा भर जाती है, जिसको अगर हम नहीं निकाली जाए तो पाइप फटने का खतरा रहता है, अंदेशा रहता है। तो ऐसे में हम जो वाल्व का इस्तेमाल करते हैं उसको एयर रिलीज वाल्व कहते हैं। और ऐसे ही नॉन रिटर्न वाल्व, जिससे कि पानी जो आपने एक बार पंप कर दिया है वो वापस मोटर के ऊपर जोर ना डाले, बैक फ्लो ना हो, तो इसके लिए भी नॉन रिटर्न वाल्व, ये कुछ चीजें काम में ली जाती हैं। उसके अलावा जो प्रेशर गेज है, दाब को नापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको प्रेशर गेज कहते हैं। और इस प्रेशर गेज पे खास तौर से ये ध्यान में रखा जाता है, जहां पानी का इनलेट हो रहा है वहां पे एक प्रेशर गेज लगाया जाता है और आउटलेट पे एक प्रेशर गेज लगाया जाता है, और दोनों प्रेशर गेज के अंदर जो रीडिंग आती है लगभग एक समान आनी चाहिए। अगर ज्यादा उसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाइप में चौकअप है या फिल्टर कहीं पे भी और मैं फिल्टर में कहीं रुकावट आ गई है, तो ये हमें सचेत करता है कि हमें फिल्टर साफ करना है। वहीं प्रेशर जो है हमको काम में जो लेना है, 1 kg फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो प्रेशर है, इससे कम प्रेशर अगर होगा तो हमारे जो ड्रिपर्स है वो काम नहीं कर पाते सुचारू रूप से। वहीं अगर 4 kg फोर्स पर स्क्वायर

सेंटीमीटर का प्रेशर उससे ज्यादा अगर है तो पाइप फटने का अंदेशा रहता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि कितना प्रेशर हमें मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटक है उसको बोलते हैं वेंचुरी या फिर हम बोलते हैं फर्टिलाइजर टैंक। तो किसान को यह सुनिश्चित करना होता है कि वो वेंचुरी लगाना चाहता है या फर्टिलाइजर टैंक, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। और इनके द्वारा क्या होता है कि जो उर्वरक है पानी में घुलनशील उर्वरक पानी के अंदर घोलकर हम बूंद बूंद सिंचाई तंत्र के द्वारा पौधों की जड़

0: की होती है और 16 एमएम की और 20 एमएम की होती है। ज्यादातर जो आजकल इस्तेमाल में लाई जा रही है वो 16 एमएम वाली है और 16 एमएम की जो लेटरल लाइन होती है उसकी जो पानी को लेके चलने की क्षमता होती है 400 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो पानी को लेके चलने की उसकी क्षमता होती है। वहीं अगर 12 एमएम की बात करें तो 200 लीटर प्रति घंटा का उसका क्षमता होती है। वहीं 20 एमएम की अगर बात करें लेटरल्स की तो 600 लीटर प्रति घंटा पानी को लेके चलने की क्षमता उसकी होती है। और इन्हीं लेटरल्स के ऊपर कुछ ड्रिपर्स लगे होते हैं जिनको कि ऑनलाइन ड्रिपर्स या इनलाइन ड्रिपर्स कहा जाता है और इनसे जो रिसाव निकलता है पानी जो निकलता है तो उसको हम नापते हैं एलपीएच में लीटर पर आवर, एक घंटे में कितना पानी निकला उस ड्रिप से वो उसका डिस्चार्ज कहलाता है। और डिस्चार्ज के आधार पर हम ये ड्रिपर्स को तीन श्रेणी में बांट सकते हैं, निम्न डिस्चार्ज वाले जो कि 0.25 लीटर से लेकर 1 लीटर तक की क्षमता वाले और मीडियम डिस्चार्ज वाले 2 से 4 लीटर वाले और हाई डिस्चार्ज वाले 5 लीटर से अधिक डिस्चार्ज जो देते हैं उन ड्रिपर्स को।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से आप बता दिया कि बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का जो घटक है वे कहीं कहीं है। अब ऑनलाइन ड्रिपर्स और इनलाइन जो ड्रिपर है वे भी काश्ता चलन में है और काश्तकार भाई कुछ तो जाने से पर कुछ नहीं जानकारी को अभाव है तो आपसे जानवो चाहूंगा भाई ये कहीं हुए थे और किन तरीका से माका जो काश्तकार भाई है वे आपकी फसल में सिंचाई का रूप में यानी काम में ले सके।
0: ऑनलाइन ड्रिपर्स वो ड्रिपर्स होते हैं जो कि लेटरल्स के ऊपर फिक्स किए जाते हैं ऊपर लगाए जाते हैं और इनलाइन ड्रिपर्स जो होते हैं कि वो पहले से ही फैक्ट्री में ही ड्रिप लाइन के अंदर लगे हुए आते हैं। अब दोनों का उपयोग क्या है, उपयोग जो फसलें होती हैं जो जिनमें दूरियां कम होती हैं जैसे सब्जियां हो गई तो सब्जियों में दूरी पौधे से पौधे की दूरी कम होती है 30 सेंटीमीटर की होती है 45 सेंटीमीटर की होती है 60 या 120 सेंटीमीटर की होती है तो इन सब चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है इनलाइन ड्रिपर्स का। अगर आप तंबाकू की खेती कर रहे हैं तो भी उसमें इनलाइन ड्रिपर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केले की खेती कर रहे हैं तो भी उसमें इनलाइन ड्रिपर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन ड्रिपर्स खास तौर से उन पेड़ पौधों के लिए होते हैं जिनकी दूरियां ज्यादा होती हैं, खास तौर से अगर हम मैं कहूं बगीचों के बारे में बात करूं आम का बगीचा हो गया अनार का बगीचा हो गया नींबू का बगीचा हो गया या आंवले का बगीचा हो गया तो इन सब चीजों में जो ड्रिपर्स लगाए जाते हैं वो ऑनलाइन ड्रिपर्स होते हैं और इनका उपयोग किया जाता है।
1: जी बहुत ही बढ़िया आप बताया सर। अब आपसे चलता चलता यही जानना चाहूंगा भाई ड्रिप सिंचाई तंत्र लगाती टाइम का जो काश्तकार रहे थे वे कौन कौन सी ऐसी खास मोटी बातें छे जाको अगर ध्यान में रखेला तो वहां को जो सिंचाई तंत्र छे वो निका तरी काम करे लो और वहां जो लागत को मूल्य लागे छे उनको पूरा फायदो भी मिले लो।
0: किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल बगीचा इत्यादि के रूप में अगर आप कोई चीज लगा रहे हैं तो आपको वो पहले तय करना होगा कि कौन सी चीज आप करने वाले हैं उसके हिसाब से ही आप ड्रिप सिस्टम का चयन करें। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि आपको कौन सी कंपनी का ड्रिप सिस्टम लगाना चाहिए। इसके लिए मैं कहूंगा कि ऐसी कंपनी का चयन करें जो आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देती हो और जो आसपास के किसान भाइयों ने पहले काम में लिया है और उनका उनके प्रति अच्छा रुझान है तो उन चीजों का आप इस्तेमाल करें। और सरकारी अनुदान भी दिया जा रहा है तो उसका भी लाभ उठाएं। नजदीकतम जो कृषि और उद्यानिकी विभाग है उनके अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, ई मित्र पर जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सही फिल्टर का चयन करें, प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर जब आप चयनित करते हैं, वेंचुरी सिस्टम लगाना है या फर्टिलाइजर टैंक लगाना है इसके बारे में भी आप निर्णय लेवें कौन सा ज्यादा उपयुक्त है। और ड्रिप सिस्टम है, वेंचुरी सिस्टम है, फर्टिलाइजर टैंक सिस्टम है, इसको प्रायोगिक तौर पर कैसे काम में लेना है, इसके रखरखाव कैसे करना है, इसकी भी आप जो कंपनी आपको लगा के दे रही है सिस्टम उससे जानकारी ले लें और या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करें। आसपास के किसान भाई जिन्होंने ड्रिप लगा रखी है उनके खेतों की विजिट करें और जानकारी प्राप्त करें कि कैसे इसको काम में लिया जाता है और क्या इसमें करना पड़ेगा, किस तरीके से इसकी देखभाल की जा सकती है।
1: जी तो सावधानियों की बात तो मोटे तौर पर होगी, अब थोड़ी सी अगर आप यह भी बता दो भाई क्यों जरूरी चेक करना, अगर कौन करेला तो कई नुकसान होगा की संभावना।
0: रखरखाव करना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की रखरखाव करते हैं तो 10 से 15 वर्ष तक इस ड्रिप इरिगेशन को आप वापर सकते हैं और अगर रखरखाव नहीं करोगे तो कोई भी चीज खराब हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर से समय समय पर साफ करना जरूरी है, चाहे आप साप्ताहिक रूप से कर सकते हैं, पाक्षिक रूप से या महीने के हिसाब से या जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैन्युअली कर सकते हैं या सिस्टम को चालू रनिंग सिस्टम में बैक फ्लश करके बैक वॉश करके भी कर सकते हैं। लेटरल लाइन्स है उनकी एंड कैप को लास्ट में जो कैप होती है उसको एंड कैप कहते हैं, चालू सिस्टम में साफ कर सकते हैं। ड्रिपर्स ऑनलाइन और इनलाइन ड्रिपर्स है उनकी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है और ज्यादा समय तक अगर आप साफ सफाई नहीं कर पाते या आपकी जो पानी में नमक की मात्रा ज्यादा है या साल्ट ज्यादा है तो ऐसे में आपको कुछ समय पश्चात आपको एसिड ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। इसमें एसिड ट्रीटमेंट में आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं तो किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप एसिड ट्रीटमेंट करें तो पहली बार जब करते हैं तो आप जिस कंपनी ने आपको लगाकर दिया उसके अधिकारियों को बुलाएं और उनसे करवाएं और आप प्रशिक्षण लें। एक बार जब प्रशिक्षित हो जाते हैं

0: तो फिर अगली बार आप ऐसे ट्रीटमेंट स्वयं भी कर सकते हैं। और फसल कटाई होने के पश्चात खेत में जब आप जुताई करते हैं तो उस समय ये जो भी लेटरल्स है इनको इकट्ठा कर लें, और जब पुनः आप खेती करते हैं तब उस समय इनको साफ सफाई करके पुनः स्थापित करें और उपयोग में लें।
1: जी, काश्तकार में डॉक्टर राजेश कुमार सैनी, हरित गृह विशेषज्ञ एवं इंटरनेशनल ट्रेनर भी आप छे, और आज आपने स्टूडियो में आया और आपने बताया कि सिंचाई की जो सूक्ष्म विधियां छे वे कुंकुं सींचे कि या सरकार सो आप अनुदान ले रिया को फायदो ले सको छो, तो उम्मीद करा छा यहाँ के द्वारा दी गई जानकारी आपने खूब फायदेमंद हो गई और इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी दे बताई डॉक्टर साहब, आपको खूब खूब धन्यवाद सा।
2: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉप रोड, टॉप फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: आशीष जी देखो कितनी बढ़िया जानकारी दिलाया बूंद बूंद सिंचाई के बारे में, और जानकारी दिलवाया डॉक्टर राजेश सिंह जी से। तो यह जानकारी को सुखी सुखी को सुना, एक अनुभव प्यारो सुगीत
1: ले तो गण मिले सुना पाए सगला।

0: सावणी हो सुवटी हो राज, भाई सावण को जो महीनों है ये हो गई यही है। तो देखो लोकगीत आप सुन लिया, जानकारी आप ले लिया, और लोकगीत और जानकारी लेता तक का देखो कार्यक्रम में टाइम अठे ही पूरा हो रही हो। तो आपकी बहन मधु नायक ने
1: और अश्विनी कुमार सिंह ने दो इजाजत
0: चालार करा। राम राम, राम, राम सा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए अब पेश है कार्यक्रम शख्सियत, जिसमें भेंटवार्ता सुनिएगा गफरुद्दीन मेवाती से, पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती से। ये हमारे आकाशवाणी अलवर का अंशदान है।
1: नमस्कार, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में मैं अर्चना जैन आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वाद्य यंत्रों की एक समृद्ध परंपरा चली आ रही है, जिनसे भावनाओं का अद्भुत संचार होता है, जिनका मुख्य कार्य गायन के माध्यम से अभिव्यक्त किए जा रहे भावों की प्रस्तुति को सुंदर बनाना है। जिस भाव और रस को शब्द और मानव कंठ व्यक्त करते हैं, उसी भाव को आकर्षक ढंग से प्रकट करने का प्रयास इन वाद्य यंत्रों के द्वारा होता है, जिनके अभाव में संगीत अपूर्ण सा नजर आता है। ऐसा ही एक उत्कृष्ट श्रेणी का वाद्य यंत्र है भपंग, जो हमारे राजस्थान के अलवर जिले का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, जिसके द्वारा राजा भर्तृहरि, भक्त पूरनमल और हीर रांझा इत्यादि की लोक कथाएं आज भी अरावली की वादियों में गूंजती हैं। इस विलुप्त होती लोक वाद्य परंपरा को, राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार, जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, श्रीमान गफरुद्दीन मेवाती जी आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। गफरुद्दीन मेवाती जी राजस्थान के उन चुनिंदा लोक कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने इस विलुप्त होती भपंग वादन कला को अपनी पहचान और साधना का माध्यम बनाया। साथ ही गांव ढाणी से लेकर बड़े मंचों तक राजस्थानी संस्कृति को जीवंत बनाए रखा। गफरुद्दीन मेवाती जी, आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी, मेरा नाम गफरुद्दीन मेवाती जोगी है। मैं राजस्थान का अलवर जिले में रहता हूँ।
3: इत दिल्ली उत आगरो ब्याना और बैराठ, इता चकल्ला बीच में बसे मेरी ब्रज रंग मेवात।
1: क्या बात है।
2: मैं आपको एक थोड़ा सा मेवाती लोकगीत सुनाता हूँ, जो उसकी मिली जुली संस्कृति के उस पे आता है।
1: जी।
3: अर काया पे अभिमानी, अर काया पे अभिमानी, तू या माया पे बेही मानी, रे मत करियो मेरा नाम।

अरे ये माया तेरे संग न चलेगी, ये माया तेरे ओ संग न चलेगी, काया एक दिन मिट्टी में मिले।

0: बात है, भपंग वादन के साथ आपके गायन की बहुत सुंदर प्रस्तुति, और इसी के लिए हाल ही में पद्मश्री सम्मान से आपको केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, तो सर्वप्रथम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जब इस सम्मान की प्राप्ति आपको हुई या इस सम्मान की घोषणा जब आपने सुनी, तो सबसे पहला अनुभव आपका क्या रहा?
1: जिस वक्त घोषणा

0: हम गांवों से जाकर के।
1: तो भपंग वादन से ये जुड़ाव आपका निरंतर चलता रहा और बाद में बहुत से लोकगीतों और गाथाओं को भी इसके माध्यम से गाया जाने लगा।
0: जी
1: उस बारे में भी हमें बताइए।
0: जो बीच में बड़े जाके हुए तो गांवों में पहले और कोई मनोरंजन का कोई साधन नहीं था
1: जी,
0: तो ब्याह शादियों में भी पिताजियों के बुलावा हमारे आने लगे। तो उस जमाने में जब आता था तो पहले लिखी आती थी शादियों के कार्ड में, जो आती थी लगन आती थी उसमें लिखी आती थी, अगर इस तारीख में कैथवाड़े के जोगी बुद्ध सिंह की पार्टी खाली हो तो शादी की डेट रख लेना, इस तारीख को नहीं बढ़ा देना आगे सब
1: जी,
0: लेकिन हम शादी नहीं करेंगे जब तक उनकी पार्टी हमारी शादी में नहीं आएगी।
1: एक विशिष्ट स्थान बनने लगा आपका इस क्षेत्र में।
0: बिल्कुल, संगीत नृत्य में वो था गाँव में पहले, और उसके बाद में फिर हम ब्याह शादी में जैसे तीन दिन बारात होती तो तीन बारात अटेंड करते थे उस जमाने में, बारात तो उनमें जाके गाया करते थे
1: जी, जो हमारी मेवाती लोक संस्कृति है और ब्रज संस्कृति है
0: जी। तो इन दोनों में ही हमारे यहाँ जैसे इस क्षेत्र में हमारे मेवा क्षेत्र में भक्त पूर्णमल का किस्सा
1: जी
0: और महादेव जी ब्यावलाल कृष्ण जी की जो बात थी चंद्रावल गुजरी वाले, मेरे ब्रज भूम बाकी बसे जहाँ श्याम सलोने कान, लूटल लगे गुजरी सखी वहाँ प्रगट हुए नादान। हाँ समझा ले तेरे या लाला है मैया, समझा ले तेरा या काना है रे मोहे छेड़े वो, समझा ले अपने काना है रे, समझा ले अपना काना है मोहे छेड़े रोज डगरिया में, वो समझा ले अपना काना है रे मोहे छेड़े रोज डगरिया में, वो मैं तो जल भर में को जा रही री मैया, जल भर में को जा रही री।

0: जाले अपने काना है मुझे छेड़े रोग नगरिया में।
1: क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत प्रस्तुति आप भपंग वादन के साथ हमारे श्रोता आज आपकी सुन रहे हैं, तो बहुत ही मनोरंजन का अच्छा साधन ये रहा है। और इस भपंग वादन ने आपको एक विशिष्ट पहचान भी दी है, साथ ही बहुत सी उपलब्धियां और सम्मान भी आपने इसके द्वारा अर्जित किए हैं, उनके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
2: इसमें सर हमने पहले तो हमारे यहाँ साक्षरता के कार्यक्रम चलते हैं हमारे राजस्थान में, हमने उसमें साक्षरता के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों में साथ दिया, जैसे कि गाँव में पढ़ा जो अनपढ़ बच्चे थे उनको और बड़े लोगों को उनको शिक्षा से जोड़ा गया, नए वातावरण के रूप में बनाने के रूप में उसमें कार्यक्रम में पब्लिक को इकट्ठा करना, फिर उनको शिक्षा के बारे में बताना, हम उसमें काम किया इसी के माध्यम से बप्पन के साथ में हमने।
1: और बहुत से सम्मान भी आपको प्राप्त हुए हैं,
2: बहुत मिले हैं, अपने राज्यपाल सम्मान मिला मुझे राजस्थान से, प्रधानमंत्री भैरव सिंह बाबा थे जब उन्होंने सम्मानित किया मुझे मुख्यमंत्री साहब ने, उसके बाद फिर हम इसी से ही हमें 2016 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य का जो वो था अवार्ड वो दिया
1: जी,
2: फिर इसी से मुझे अब 2022 में संगीत नाटक अकादमी सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का अवार्ड मिला
1: जी,
2: और उसके बाद फिर हम इसमें चलते रहे फिर फोर विंग कार्यक्रम होते रहे, आए चले गए आए, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के थ्रू कार्यक्रम बहुत हुए, उनमें पूरा भारत घूमा
1: जी,
2: और फॉरेन विदेशों में 45-40 देश विदेशों में गए हैं
1: जी,
2: और इसी के माध्यम भपंग के युग से पांडवों का कड़ा महाभारत 48 घंटे का मैं गाता हूँ,
1: अच्छा
2: भरतपुर नल का किस्सा गाता हूँ
1: जी,
2: और अपने लोक रामायण है जिसको हम लंका चढ़ाई कहते हैं वो भी मैं भपंग के साथ गाते हैं
1: जी,
2: हाँ और कृष्ण जी के भजन और शिव जी का ब्यावला ये सब गायकी हम बप्पन के साथ ही करते हैं, जिसमें जो वे सरंगी हारमोनियम ढोलक बप्पन नकारा ये सारे साजों से साथ हम रहते हैं।
1: विदेशों तक भी आपकी ये भपंग वादन की प्रस्तुति रही, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे
2: जी, हमें इसके सब हर जी गए हमारा विदेशों में जहाँ भी गए वहाँ बप्पन का बहुत अच्छा वो रहा, और इसी के माध्यम से

0: हमने महाराणी एलिजाबेथ के जन्मदिन पर एलिजाबेथ हॉल लंदन में अपना कार्यक्रम किया
1: जी।
0: वहाँ लोगों ने सराहा, बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है, इस विलुप्त होती अनमोल विरासत को आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसको जीवंत रख पाएंगी, या इस ओर आपके कुछ प्रयास हम जानना चाहेंगे?
0: इसको जैसे मुझे ये अवार्ड मिले हैं सांस्कृतिक, मतलब संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है, तो बच्चों में उसी वक्त ललक पैदा हो गई थी
1: जी।
0: उनको 1,00,000 रुपए मिला है और राष्ट्रपति साहब ने इनको वो दिया है, स्मृति चिन्ह दिया है, सम्मानित किया है साथ में, अब हम भी करेंगे ऐसे जो हम भी लेंगे
1: जी।
0: तो बच्चों में वो ललक पैदा हुई और अब जो दूसरा जो अवार्ड मिला है पद्मश्री, अब तो लोग बहुत सीखने के लिए तैयार हो गए, लोग आने के लिए, तो पहले मैंने शिकायत दी,
1: बहुत अच्छी बात,
0: 35 लोग मैंने पहले शिकायत दी थे
1: जी,
0: चल रहे हैं और अब और लोगों में ज्यादा ललक पैदा हुई है
1: जी। गफरुद्दीन जी, भपंग वादन ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, विश्वव्यापी ख्याति आपने इसके द्वारा अर्जित की है, तो इस ओर आपकी कितनी साधना रही, कैसा रियाज आप करते हैं, ये हमारे श्रोता आज जरूर जानना चाहेंगे।
0: ये हमारा सबसे ज्यादा रियाज तो ये रहता है कि हम गांव-गांव जो जाते हैं ना, दिन में सारे दिन गांवों में घूमते, रियाज ही होता रहता है
1: जी,
0: आज भी चलता है
1: जी।
0: अब थोड़ा इसे इतना हो गया कि अब हम जैसे होटलों में या स्टेजों पर कार्यक्रम करते हैं
1: जी।
0: अब घर घर इतना नहीं जाते जो पहले जाया करते थे
1: जी।
0: नहीं, हमारा कम से कम 3-4 घंटे का तो रियाज दिल्ली का गाँवों में रहा करता था। जैसे कि हम आपको एक बताते हैं कि जिस किसी गांव में 5 आदमी बैठे पाए जाते थे, चौपाल वो बैठे रहते थे गांवों में
1: जी,
0: तो उस वक्त हम गा गा कर सुनाते थे, देवाती में वो सुना रहा हूँ। अरे
2: खेती गए वाए जान रे, निपज आई जामे गोभी, लाला खेती गए दी वाए जान, निपज आई जामे भी गोभी, राजब राज गए वाए जान रे, जहां के राजा लोभी, राज गए वाए जान रे, जहां के राजा लोभी, जब लूख गए दीवाए जान, जिनन के बुगला बसना देखी रूख गए वाए जानो, जहां के बुगला बसना राजब लोग गए वाए जान रे, जहां के मुखदम भी हंसना जब ये लोग गए वाए जान रा, जहां के मुखदम भी हंसना।

0: जब एक जमा सुभान लाख हो तब कैसे दिल फूटे, जब एक लो हो तो ना हुए दसन तुम कैसे दिल लूटे, जब एक लिपित बजू किलो वासू कैसे टूटे, इकली तो बज हुए किलो वासू कैसे भी टूटे।
1: इस तरीके से हम गांवों में चौपालों पे जब आदमी बैठे पाते थे हमें उनके सामने गाया करते थे, कोई पांच रुपया कोई दो रुपया कोई दस रुपया देता जिससे हमारे घर का खर्चा चलता था।
2: जी बड़ी साधना आपकी ये रही है और बड़े हर्ष की बात भी है कि आज हमारा जो आकाशवाणी का स्टूडियो आपका मंच बन गया है और हम आपका ये गायन सुन पा रहे हैं। तो कोई ऐसी भी मंच प्रस्तुति या कोई यादगार पल आपके जहन में है जो एक कलाकार के रूप में आपको बहुत प्रभावित कर गया हो?
1: जी हाँ, जब जिस वक्त हमें बहुत खुशी हुई जब सबसे पहले हम एक दिल्ली में कार्यक्रम था वहाँ किया, मुंबई में था क्रॉस मैदान में
2: जी
1: एक वहाँ किया, तो यह दो तीन जगह जो कार्यक्रम होता है बहुत खुशी हुई। गांव से जाकर के वहां मैंने जो ये आकर के जो हुआ तो वहां हमने जब एक वो था कि हमारा बहुत उसमें कार्यक्रम था जब पहला गाना मैंने वह उसमें जो अच्छा सुन लगा था लोगों को मुंबई में सुनाया था हम

0: हम हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे।
1: क्या
0: जो मेल बढ़ाए आपस में वो धर्म ईमान रखेंगे। ये शंख बजाए भाईचारे का और अमन की एक अजान रखेंगे। ये काबा भी रखेंगे और हम काशी भी रखेंगे, मगर सबसे पहले अपना हिंदुस्तान रखेंगे।
1: जी क्या
0: अरे हे रही है टर ही टर, वो मच रही है टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रही है टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रही है टर ही टर, हे रही है टर ही टर, मच रही है टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रही टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रही है टर ही टर। ये देश में जो राज करते वो है मिनिस्टर, वो संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर, वो संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर। ये फिल्म में जो काम करते वो है एक्टर, अब जिले के अफसर को कहते जिला के अफसर को कहते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटल, दे रहिए टर्मिटल, नचिए टर्मिटल, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटल, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटल। स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ावे मास्टर, वही मास्टरों को चेक करते वही इंस्पेक्टर, ए हर कमरा में लड़का पाता, हर कमरा में लड़का पाता वह मॉनिटर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटल, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटल। हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टरों के नीचे लेते वो है कंप्यूटर, गांव के आदमी सब कंप्यूटर समझ लेते हम कंप्यूटर के हैं
1: जी।
0: हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टर, ये डॉक्टरों के नीचे लेते वो है कंप्यूटर, ये दौड़ी चिंता जी में दूल्हे, दौड़ी चिंता जी में दूल्हे उठे सिस्टर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटल, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटल। इस तरीके से पेश करते थे जब लोग बहुत खुश हुआ करते थे।
1: जीवन की रोजमर्रा की सच्चाइयों को अपने इस अनूठे वाद्य यंत्र और गायन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते रहे। तो अब यहाँ मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपका इसके पीछे जीवन मंत्र क्या रहा जिसने आपको प्रेरित किया, लगातार इस पर आप बने हुए हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: मेरा कहा था कि मेरे पिताजी थे जो अनपढ़ थे
1: जी,
2: उन्होंने कहा कि बेटे मैंने आपको पढ़ाया तो थोड़ा कोई वसी सर्विस में लग जा, इस चीज में गुजार नहीं होता परिवार का, मैंने किया है। वो बोले ठीक है, जब पिताजी का नाम देखा मैंने
1: जी,
2: लोगों को जो बता रहा था आपको कुछ देर पहले बताया था आपसे, को मैं शादी में लिख के आता था अगर बुद्ध सिंह जोगी की पार्टी इस तारीख में मिले खादी तो शादी करना, नहीं तो आगे बढ़ा देना
1: जी।
2: मैं बोला अगर मैं इस लाइन को छोड़कर तो मैं इसमें जाऊंगा तो मेरे बाप का नाम तो डूब जाएगा
1: जी। इस परंपरा को आपको आगे ले जाना,
2: परंपरा को आगे ले जाने के लिए मैं इसके साथ में लगा रहा
1: जी।
2: और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारा इतना मांग थी और इतनी वजह थी कि जो हम गाते हैं तो इनके वजह से इनके माध्यम से गांवों में झगड़ा जो होते थे आपस में तो उनसे भी वो उसका फैसला हो जाया करता था। जैसे कि उसमें पंडों के कड़े में महाभारत में आता है, उसमें अर्जुन जिस वक्त चौपरचार खेलते चौपरचार खेलने के बाद में जब अर्जुन ज्यादा गमगीन हो जाता है, भीम बोला कि तूने किसी भाई से नहीं पूछा और चौपरचार खेलने के लिए बैठ गया और आज हमारा पूरा आपने एक साल का वनवास ले लिया है
1: जी,
2: और मैं ये चाहता हूँ कि तू जब वहां वनवास में हम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा।
1: हाँ।
2: वो छोड़ करके चला गया। वो बोला मेरा भाई, मैं पूछ के आता हूँ, मुझे कहता भाई समझ जाए मेरी बात को। तो जब उसने कहा और भीम से दुर्योधन से जाकर के कहता है सुन दुर्योधन तो सु कहूं बड़ो त्योहारो नाम बैगे हम सु भूम बोझन मरे तेरो ले हटना पर गांव। भाई अगर पूरे शहर बसा हुआ है

0: आपका हतमापुर पांडव अर्जुन जात कहता है किससे मुझसे दुर्योधन से कि पूरा गांव आपका बसा पड़ा है उससे तो तेरा शहर कोई भोजन नहीं मर रही है जमीन अगर हमसे वजन से ये भोजन मर रही है इसको वजन लग रहा है तो भाई हम आपके गांव छोड़ के चले जाएंगे
1: कहने की ये कला थी
0: हाँ। तो इस आधार पे गांवों के फैसले हो जाया करते बड़े लोग अरे नहीं यार भाई भाई करबानी सुबाखना जिनकी गहरी मूली छाए जे भाई बट बोलना फिर भी अपनी बाह बाएं कहते हैं भुजा अपने मतलब अपना भाई ये तो भाई जो साथ देता है वो कोई दूसरा साथ नहीं देता
1: जी
0: ये उनसे वो कहता है कौन दुर्योधन कहता है अर्जुन के तो ऐसे जो इसमें दोहे हैं तो उसके माध्यम पर फैसला हो जाया करते थे पंचायतों में
1: हाँ।
0: पंचायत टूट जाया करती थी गांवों में तो इसलिए इसको और ज्यादा लोग पसंद किया करते
1: मतलब मनोरंजन का ही ये साधन नहीं था कि बल्कि ये मतलब बड़े से बड़े झगड़ों को भी बड़े ही सरल शब्दों में इससे कह दिया जाता था। गफरुद्दीन जी अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी पहली प्रस्तुति कहाँ रही और विभिन्न मंचों जहाँ आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं उसमें एक विस्मरणीय मंच आपका कौन सा रहा।
0: पर्यटन कला सांस्कृतिक विभाग राजस्थान सरकार का कार्यक्रम था मेरा राजस्थान दिवस का जयपुर में उसी वक्त मुझे वहां से ले जाएगा जयपुर जयपुर आकाशवाणी पे
1: जी
0: सबसे पहले पांडव कड़ा मैंने वहां सुनाया उन लोगों को तो उसमें मैंने जो सुनाया था वो आपको मैं थोड़ा सा पेश कर रहा हूँ पांडव कड़े से अरे सतरे से अरे लोगों में बरस भी गया है बीत

0: त्रे सौ सतासिया वर्ष गला है बीत तीन जारू पंजूरम होया जिनकी जगत करे पट पीत कहां के दास्तान होते हतनापुर के हतनापुर में कौन की राजधानी कैरूर पांडुन अब रथ जोड़ वो चले जी हर बन को अब रथ जोड़ चले जी हर बन को अब रथ जोड़ जब रथ हुए बाग के बोले जब रथ हुए बाग के बोले दशरथ प्राणो तजे हे राम के संग को अब रथ जोड़ चले जी हर बन को अब रथ बाघोड़ो बलवंड रे अचल गुणवा का बेगम मेरो बाघोड़ो भी बलवंड अचल गुणवा का गम बाघोड़ो बलवंड रे अचल गुणवा का बेगम के बिच मिल लायो गुरु सुताज भी मनऊ मेरो बागोड़ो भी बरबल अचल गुरवा का भी गम
1: तो जानना अंग्रेज को क्या तार काटते हैं क्या खबर जाती है लंदन तोरी की हवा आगे निकलती हो या
2: आपने सुना कार्यक्रम शख्सियत जिसमें पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती जी से भेंटवार्ता आकाशवाणी अलवर का अंशदान था आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर श्रोताओं अब से अर्थात 8:30 बजे से रात को 11 बजे तक आप हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम सुनेंगे और श्रोताओं आप जयपुर अजमेर के अलावा हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा करौली भरतपुर झुंझुनू अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं अभी 8:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन उसके बाद समाचार संध्या न्यूज एट 9 उर्दू में समाचार रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवारीय संगीत सभा

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में कल हुई स्वर्ण पदकों की बारिश पे और साथ साथ नजर होगी आज होने वाले शानदार भव्य क्लोजिंग सेरेमनी पर भी बात की जाएगी। आज कार्यक्रम में तन्वी शर्मा के उस इतिहास की जो उन्होंने ताइपाई ओपन के बैडमिंटन कोर्ट पर रचा है, और संडे है तो बिल्कुल दी जाएगी फिटनेस की थोड़ी सी डोज। लेकिन सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण समेत 10 पदक जीते। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान 7 पदकों के साथ संपन्न किया। 3 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक शामिल। तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीता और एनसीसी साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 84वां संस्करण नई दिल्ली सहित पूरे देश में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले आज कार्यक्रम शुरू होगा ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की हलचल के साथ, जो अब अपने समापन के निकट पहुंच चुका है। और अब से कुछ घंटों बाद इस खेल का भव्य समापन समारोह ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल खेलों पे हमारे साथ अधिक जानकारी लेकर के जुड़े रहेंगे हमारे सहयोगी विशेष। लेकिन पहले बात की जाए शनिवार के दिन की, यानी कल के दिन की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की धमक से गुंजायमान होता नजर आया पूरा का पूरा ग्लासगो। और पदक तालिका में 11वें स्थान से शुरू हुआ दिन समाप्त होते होते भारत को 4थे स्थान पर लेकर आ गया। और इस कहानी का एकमात्र किरदार थे भारतीय मुक्केबाज, जो जब रिंग में उतरे तो स्वर्ण पदक की बारिश होती नजर आई। अपने फाइनल मुकाबले खेलने उतरे 10 भारतीय मुक्केबाजों में से 7 ने जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते, जबकि 3 मुक्केबाजों ने रजत पदक भारत की झोली में डाले। आइए सुनते हैं भारतीय मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय मुक्केबाजों की ताकत के आगे दुनिया भर के दिग्गज बेअसर नजर आए, जहां रिंग में उतरते भारतीय मुक्केबाजों ने एक के बाद एक स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी। प्रीति पवार ने मुक्केबाजी में भारत के लिए खाता खोला, जिन्होंने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कैनेडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलो कैटेगरी में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्स को 5-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। साक्षी ने 51 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मैच में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से हराकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अगले ही मुकाबले में प्रिया घणगस ने कनाडा की मैरी बथुल अल अहमदीह को 4-1 से मात देकर पदक तालिका में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अंकित कर दिया। मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों में सचिन सिवाच ने इंग्लैंड के मुक्केबाज के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड अपने नाम किया। अस्सी किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अंकुश ने इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। भारत के लिए पदकों का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा। नरेंद्र ने पुरुष के 90 किलो से अधिक वर्ग में रजत पदक जीता। जादूमणि सिंह को भी ऑस्ट्रेलिया के जाई डिक्सन के खिलाफ 5-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि महिलाओं में लवलीना बोरगोहेन को 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त हुआ। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: तो विशेष क्या कहा जाए कि शनिवार का दिन भारत के लिए बॉक्सर्स डे शामिल हुआ।
2: व्यक्ति में कहना चाहूंगा कि ये भारत के लिए बॉक्सर्स डे नहीं, गोल्डन डे साबित हुआ है। भारत ने 7 गोल्ड मेडल भारतीय मुक्केबाजों ने जीते और 3 जो है सिल्वर मेडल उनकी झोली में डाले।
0: जी बिल्कुल, और एक गोल्ड मेडल और भी आया इसके इतर। लेकिन क्या कहा जा सकता है इन मुक्केबाजों के प्रदर्शन पे। हमने रिपोर्ट में सुना 10 खिलाड़ी थे, उन पे कितनी चर्चा हो पाएगी वो तो संभव नहीं है, लेकिन क्या सबसे खास आउटपुट रहे इन 10 खिलाड़ियों के, क्या कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं भारत की इस मेडल टैली में।

0: शक्ति, सेमीफाइनल से पहले सब जगह खबर चल रही थी कि 10 खिलाड़ी 10 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित कर लिए इसमें, लेकिन खास बात यह रही कि 10 के 10 ने फाइनल में जगह बनाई, जिसमें से 7 गोल्ड और 3 सिल्वर हमें प्राप्त हुए। साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, प्रिया घांगस, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल जैसे खिलाड़ियों ने अलग अलग वेट कैटेगरीज में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं सिल्वर मेडल की अगर बात करें तो लवलीना बोरगोहेन और जादूमणि सिंह नरेंद्र, इन तीनों ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया। तो जो एक बात होती है सेमीफाइनल से पहले कि ब्रॉन्ज तो पक्का ही हो गया, ऐसा ना करते हुए भारतीय मुक्केबाजों ने भारत को गोल्ड और सिल्वर जो है उनकी झोली में डाला।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक पे दाव लगाया और हर मुक्का जो है भारत के लिए एक बेहतर पदक और एक बेहतर उम्मीद लेकर के आया। और बात की जाए भारतीय पैरा खिलाड़ियों की, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत का पैरा इवेंट्स में अभियान 7 पदक के साथ संपन्न हुआ। इनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रस्तुत है भारतीय पैरा टीम के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट।
2: पैरा इवेंट्स में भारत के लिए पदकों की शुरुआत झंडू कुमार ने कांस्य पदक के साथ की। भारोत्तोलक झंडू कुमार ने 130.9 के बेस्ट रिजल्ट के भारत के लिए ग्लासगो में पहला पदक जीता। रजत पदक के लिए हुए कड़े मुकाबले में वो सिर्फ 0.1 से पीछे रहे। एथलेटिक्स में महिलाओं की शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में शर्मिला धनखड़ ने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक और शिल्पा कंचुगर को पालू शायला ने 7.26 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 100 मीटर T47 दौड़ में दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 में भी भारत ने डबल पोडियम फिनिश करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। सोमन राणा ने 13.40 मीटर के विनिंग थ्रो के साथ पहला स्थान और शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: सिर्फ खिलाड़ियों ने पदक ही नहीं जीते, जब हम डबल पोडियम की बात करते हैं तो बताता है कि आपके उस इवेंट में किस प्रकार का दबदबा है, जब शीर्ष 3 में से 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी आपके देश के होते हैं और बहुत गौरवमय उपस्थिति होती है। भारत ने इस बार 2 से 3 कैटेगरी में ऐसे डबल पोडियम फिनिश किए और खासकर वो 100 मीटर की दौड़ जिसमें भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों अपनी झोली में डाला। और अब एथलेटिक्स की बात कर ही ली है तो बात की जाए इस पूरे खेल आयोजन में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरने वाले भारत के लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुरवीर सिंह की, जिन्होंने कल एक और पदक भारत के खाते में जोड़ा। गुरवीर ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए इतिहास रचा। उन्होंने 13:24.95 सेकंड का समय लेते हुए यह दौड़ पूरी की। गुरवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं।
3: But the man who steps up to the podium right now is a history maker. He did so in the 10,000 meters and he's done so in the 5,000 meters as well. The first ever medalist from India in this discipline, Gurbir Singh.
1: पहले 10,000 मीटर और फिर 5,000 मीटर विशेष, कितना ये खास खिलाड़ी है भारत के लिए।
0: ये गुलवीर जो है भारत के लिए बहुत ही खास खिलाड़ी है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को पदक दिलाया है जो कि परंपरागत तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए सही नहीं माना जाता है या उसके लिए उनकी जो बॉडी है वो ठीक नहीं मानी जाती है। उनको ये पदक भारत के लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने एक ही कॉमनवेल्थ इवेंट में जो है दो मेडल जीते हैं और ये डबल पोडियम फिनिश करने वाले भी पहले भारतीय बने हैं। गुलवीर ने ट्रेडिशनल लॉन्ग डिस्टेंस जो सुपर पावर्स कहे जाते हैं कीनिया और युगांडा, उनके खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए ये मेडल अपने नाम किए हैं।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि इसके पहले जब उन्होंने 10,000 मीटर में रजत पदक जीता था तो भी काफी चर्चाएं उनकी हुई थी। एक ऐसा इवेंट है जहां पे आप 24 से 25 चक्कर लगाते हैं उस 400 मीटर के ट्रैक के, जो आपके स्टैमिना के साथ, आपके पेशेंस के साथ, आपके मनोवैज्ञानिक ध्यान की भी बहुत ज्यादा परीक्षा लेता है। आपको लगातार चक्कर लगाने हैं, आखिरी समय तक अपनी स्पीड को बचा के रखना है और फिर आखिरी के 100, 150, 200 मीटर में जो कल भी देखने को मिला और 10,000 मीटर की दौड़ में भी था, एक शानदार स्प्रिंट आती है और भारत को पोडियम तक लेकर के जाती है। और भारत की अगर पदक तालिका की बात की जाए तो 39 पदक हो चुके हैं, चौथे स्थान पर भारत है, 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। चेरी ऑन द केक भारत के लिए इस आयोजन में रहा है जूडो, जिससे 2 स्वर्ण आए, 1 रजत आया, 1 कांस्य पदक आया।

0: आकांक्षा शायद नहीं थी, लेकिन भारतीय जूडो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे देखा जा सकता है विशेष?
1: देखिए, जूडो की बात करें शक्ति, तो यह जो इवेंट रहा है इसमें भारत को पहला गोल्ड हासिल हुआ है। 1990 में यह कॉमनवेल्थ गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था जूडो को, और उसके बाद से भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हमें देखने को मिला है। अस्मिता डे जो है वो पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता, वहीं हर्ष सिंह 60 किलोग्राम में पहले ऐसे पुरुष बने जिन्होंने मतलब भारत के लिए गोल्ड जीता। यामिनी मौर्य और उन्नति शर्मा ने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर भारत के मान को बढ़ाया है।
0: जी बिल्कुल, और मान को बढ़ाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन तमाम पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बात की जाए बैडमिंटन कोर्ट की, जहां एक इतिहास आज रचा है। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ने, जिन्होंने ताइपे ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीता, 17 वर्षीय तन्वी ने इस खिताब को जीतने वाली किसी भी कैटेगरी की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनने का इतिहास रचा है। ये उनका पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल है।
2: तन्वी शर्मा, then she becomes just the fourth Indian women's single player to win a super 300.
3: तन्वी शर्मा ने आज महिला सिंगल्स फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त गुएन थुई लिंग को 21-16, 21-16 से हराकर ताइपे ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। वह साइना नेहवाल के बाद ताइपे ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी हैं। साइना ने 2008 में यह खिताब जीता था। इस जीत के साथ ही तन्वी ने इस टूर्नामेंट में भारत का 17 साल का खिताबी सूखा भी समाप्त किया। 2009 में टूर्नामेंट के ग्राम प्री गोल्ड दौर में ज्वाला गुट्टा और वी बीजू की मिक्स डबल जोड़ी की जीत के बाद यह देश की तीसरी जीत है। तन्वी ने पूरे फाइनल में दबदबा बनाए रखा और बेहद संतुलित खेल दिखाते हुए सिर्फ 36 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वह सुपर 300 या उससे ऊंचे स्तर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला सिंगल शटलर बन गई हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात की जाए संडे ऑन साइकिल की, संडे के फिटनेस डोज की। भारत की स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन 2026 का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और दिग्गज भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम विशेष रूप से उपस्थित थी। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की आजादी के 79 वर्ष के जश्न के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 79 एनसीसी कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। और एनसीसी, उन्होंने कहा कि फिटनेस अनुशासन और समाज में सेवा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी करवा रहे हैं।
4: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: जी, और इस मौके पर ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेवर गिव अप की बात का ध्यान रखना चाहिए।
5: मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मौके में मुझे भी बुलाया गया है और ये साइक्लोथॉन 2026 दिल्ली में हुआ है, युवाओं लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और मैं आ रही हूँ कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए।
0: संडे ऑन साइकिल का भी 84वां संस्करण आज ही शुरू किया गया, नशा मुक्ति की थीम पर विशेष। क्या संदेश है साइकिल ऑन संडे?
1: शक्ति, अगर बात करें संडे ऑन साइकिल के संदेशों की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर, उसके बाद प्रदूषण से मुक्ति और ईंधन की बचत के साथ साथ सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम संडे ऑन साइकिल के इस इनिशिएटिव द्वारा किया जाता है, जहां हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं इस प्रतियोगिता।
0: बिल्कुल, हर वर्ग के लोग आते हैं, क्या युवा क्या बुजुर्ग, और जो जोश देखने को मिलता है सुबह सुबह शहरों की सड़कों पर, लोग आते हैं, साइकिल चलाते हैं, फिटनेस का संदेश देते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि सिर्फ फिटनेस नहीं, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी है ये साइकिल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के

0: होगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
2: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
4: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
5: पेडागॉजी इज द एंटायर वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000

0: पर बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता है। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अलरेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरैम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्रिया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया

0: में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 9 बजे अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर को सुनिए। फिल्म का नाम है अपने रंग हजार, गीत अनजान का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
4: मेरी काली कलोटी के नखरे।

0: जादू सोना सारी मन की ये माया है। अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है।
1: अरे चल सर।

बंदर में पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर धन छोड़कर पाप नहीं अपना है।

जॉनी मेरा नाम, जी हाँ ये नाम है फिल्म का, जिसका गाना अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

विविध भारती की दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: ধরে না না না বিচ ধরে না যাও শাম কইয়া করু বিচ ধরে না যাও শাম কইয়া।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे जब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाय फिल्म रॉकी के संगीत के साथ। शब्द लेखन आनंद बख्शी का है संगीत, आर डी बर्मन का।